नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आज दिन एतवार शक संवत 1948 दे जेठ महीने दी 10 तारीख ते ईस्वी सन 2026 दे मई महीने दी 31 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:38 ते 30 सैकेंड होए ने। साडी अज दी सभा दे प्रोग्राम हुण शुरू हुंदे ने। असी अपने सारे ही स्रोतियां दा निघा स्वागत करते हाँ।

हर संकट का समाधान है गणपति, हर मनोकामना की पहचान है गणपति। आइए श्री गणेश जी की इस भजन से इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं।

माँ का नाम लेते ही मन को सुकून मिलता है और माँ की भक्ति से जीवन को नई दिशा मिलती है।

राम सिमर राम सिमर ए तेरा काज है। इस श्लोक दे विच गुरु जी फरमाउंदे ने कि परमात्मा दा नाम सिमरना चाहिदा है। परमात्मा दा नाम सिमरन दे नाल ही परमात्मा साडे हर कम्मां दे विच सहाई हुंदा है, और परमात्मा दा नाम सिमरन ही साडी जिंदगी दे विच साडे लई सब तो वध काम आउण वाली चीज़ है।

दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, आठ पहर अराधिए पूर्ण सतगुरु ज्ञान। बाकी उस परमात्मा का नाम दुखों का नाश करने वाला है, उस परमात्मा का नाम जड़ा आ साढ़े सारे ही दुखों नू हर लेंदा है, और गुरु का नाम सिमरन दे नाल जीवन नू सही दिशा मिलती है। दुख

भक्ति तब और गहरी हो जाती है जब मन अपने प्रभु के दर्शन के लिए तड़पने लगता है। जब भक्त का मन श्री कृष्ण के दर्शन को तरसता है, तब उसकी हर सांस नंदलाला का नाम जपती है।

लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। वाकई जेकर उस सच्चे गुरु की साढ़े ते मेहर हो जाए, उसका मेहर परी नज़र साढ़े ते हो जाए, तो सानू लखां बादशाहियां अते दुनिया दियां सारियां खुशियां इको पल दे विच प्राप्त हो सकदियां ने। और गुरु की कृपा दे नाल दुनिया का राज भाग साढ़े लिए तुच्छ है, और गुरु साढ़े लिए सब तो अहम है, जो सानू इस जिंदगी दे विच सच्चे राह ते चलन दे लई प्रेरित करता है।

जिसके हाथों में सृष्टि की डोर है, वही हमारे जीवन का सच्चा पालनहार है। जब हम उसकी शरण में आते हैं तो भय की जगह विश्वास और निराशा की जगह उम्मीद का जन्म होता है। तुसी सर्वन कर रहे हो भक्ति रसनाल भरपूर प्रोग्राम वंदना।

देर तक चलेगी, ज़्यादा देर तक सुरक्षित रहेगी, क्योंकि हर साल देश दे विच देखा जाए तो जिहड़े नोट बहुत वड्डी मात्रा दे विच खराब हो रहे हैं। और आर बी आई नूं 2024 तो लैके 2025 दे विच 23.8 अरब गंदे और कटे फटे नोट जिहड़े ओह नष्ट करने पए सी, खत्म करने पए सी, जिहड़ी कि पिछले साल दे मुकाबले 12.3% ज़्यादा है। और सब तो ज़्यादा हैरानी करने वाली गल ये है कि सब तो ज़्यादा खराब नोट 500 रुपए के हुए ने। सो इस वजह करके रिजर्व बैंक हुण प्लास्टिक यानी कि पोलीमर नोटों जिहड़ा लियाउण दी ओह तैयारी कर रहा है। और जल्द ही इस पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा हो सकती है। हालांकि भारत ने 2012 दे विच भी ट्रायल की योजना बनाई सी जिहड़ी कि किसी कारण लागू नहीं हो सकी। तो हुण आर बी आई दा मानना है कि पोलीमर नोट कागज़ के नोटों की तुलना दे विच ज़्यादा टिकाऊ हुंदे ने और ज़्यादा देर तक चलते हैं और इन्हां नूं बार बार बदलन की जरूरत नहीं पैंदी और इहदे लई जिहड़ा आ छपाई ते भी जिहड़ा आ ओह घट लागत आउंदी है। तो ये सब दे लई राहत की खबर हो सकती है जिन्हां दे कोल जिहड़ा नोट बहुत जल्दी खराब हो जाते सन या फिर कटे फटे हालत दे विच मिलते सन, उन्हां दे लई एक बहुत वड्डी राहत की खबर है, सब दे लई राहत की खबर है। तो अगला खूबसूरत गीत इंजॉय करते हैं और मिलते हैं इस खूबसूरत गीत तो बाद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दियां अगलियां गल्लां बातां दे नाल।

और खासकर खास करके जलंधर की गल करिए जलंधर के डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी का जरा खतरा लगातार वाधा जा रहा है और शहर जलंधर के हूँ तक डेंगू के 9 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। हालांकि सब तो वड्डी सुख की गल यह है कि सारे मरीज जड़े ने वह ठीक हो रहे हैं, पर ये नाल ही जड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट दियां चिंतावां वध गईयां ने। सो इस करके थानू सब नू बेनती की जाती है कि अपने घर के आसे पास जड़ा साफ सफाई जरूर रखो और कित भी पानी जड़ा वह गंदा पानी जो खड़ा है तो उसनों खड़ा हो ना दिता जाए। और इस दरमियान स्वास्थ्य विभाग दी टीम घर घर जाके जांच भी कर रही ने और इन 43 घर जड़ा टीम ने जड़ा सर्वे किया और गए सी जिदे कुछ जगह पर लार्वा भी मिलया। हालांकि नगर निगम द्वारा हुण तक जड़ा किसी का जड़ा चलान नहीं कट्टिया गया और ना ही कोई नोटिस दिता गया। सो ये थोड़े लिए भी एक राहत की खबर है, तुसी इस गल नू सुचेत होके जागरूक होके इस गल नू समझते हुए अपना और अपने चोण वाले की सेहत का ख्याल रखना है और इस डेंगू चिकनगुनिया वर्गिया बीमारियों तो अपने आप नू बचा के रखना है।

दूर रखना है, क्योंकि ये बेजमान जानवर साढ़े उपर आश्रित ने, साढ़े वाल वेखते हैं। साडा ही फर्ज बनता है कि कुदरत की इस बख्शी हुई नियामत को सांभिया जाए, संभालिया जाए। सो बाकी जेकर तुसी इस वक्त ड्राइव कर रहे हो तो जनाब सीट बेल्ट लगा के रखना है, दोपहिया वाहन से जा रहे हो हैलमेट वेयर करके निकलना है, और जेकर बाहर धुप नज़र आ रही है तो जनाब फेस नू कवर करके निकलना है, और अपना और अपने चौन वालों का ख्याल रखना है। जब तक मिलते हैं थानू ठीक 8:40 से प्रोग्राम अड्डी टप्पा दे विच, तद तक एफ एम रेनबो की गड्डी जी थोड़ी जी वापस मोड़ के लैके आना है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम विच देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार सांझे करनगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय समुद्री फौज ने ऑपरेशन सिंदूर दौरान पूरी पाकिस्तानी समुद्री फौज को अपनी बंदरगाहों तक सीमित रहने लिए मजबूर किया। केंद्र सरकार ने कल तो शुरू हो रहे पंद्रवाड़े लिए पेट्रोल डीजल और हवाई ईंधन से बरामदी महसूल में सोध की है। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन भारत के 5 दिन दौरे से कल नवी दिल्ली पहुंचे। इस तो पहले उन्होंने गया के महाबोधि मंदिर में पूजा की। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होगा। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम विच देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार सांझे करनगे। ये हर महीने प्रसारित होने वाले रेडियो प्रोग्राम का 134वां एपीसोड होएगा। मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी ते दूरदर्शन के समुचे नैटवर्क, आकाशवाणी खबरों की वैबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप से प्रसारित किया जाएगा। इसनों AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री के दफ्तर से सूचना के प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण तो तुरंत बाद प्रोग्राम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय समुद्री फौज ने ऑपरेशन सिंदूर दौरान पूरी पाकिस्तानी समुद्री फौज को अपनी बंदरगाहों तक सीमित रहने लिए मजबूर किया। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटनी समारोह में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दौरान पाकिस्तान से दबाव पाने में समुद्री फौज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह शौर्य वाटिका ओपन एयर नेवल अजायब घर है। पहलगाम दहशतगर्द हमले का बदला लैण लई पिछले साल 7 मई में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया सी। इस ऑपरेशन दौरान भारतीय फौज ने पाकिस्तान अते पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई दहशतगर्द ठिकाने ते सटीक हमले किए सन।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी।
0: समुद्री फौज के मुखी एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दौरान भारतीय समुद्री फौज ने लड़ाई की तैयारी, संचालन समर्थावां अते हमलों नूं नाकाम करन दी काबिलियत का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि तिना सेनावां विचकार तालमेल बहुत महत्वपूर्ण सी, जो संयुक्त संचालन समर्थावां दी वधदी महत्ता की पुष्टि करता है।

मुफ्त कानूनी मदद। टैली लॉ दिया वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4-2 प्राप्त की जा सकती है।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

नमस्कार, सवेर दे नौ चुके ने, वेला हो गया FM न्यूज हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम विच देश विदेश दे लोकां नाल अपने विचार सांझे करनगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय समुद्री फौज ने ऑपरेशन सिंदूर दौरान पूरी पाकिस्तानी समुद्री फौज नूं अपनियां बंदरगाहां तक सीमित रहने लई मजबूर कीता सी। केंद्र सरकार ने कल तो शुरू हो रहे पंद्रवाड़े लई पेट्रोल डीजल अते हवाई ईंधन ते बरामदी महसूल विच सोध कीती है। म्यांमार दे राष्ट्रपति ओ मिन आउं लाइन भारत दे 5 दिना दौरे ते कल नवी दिल्ली पहुंचे। इस तो पहला उन्हां गया दे महाबोधि मंदिर विच पूजा कीती। तंबाकू दे खतरियां विरुद्ध जागरूकता पैदा करने लई अज विश्व तंबाकू रहित दिवस मनाया जा रहा है। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने अमृतसर का दौरा किया अते सीनियर अधिकारियों नाल अमन कानून की हालत का जायजा लिया। पंजाब सरकार वालों सूबे के समूह सरकारी एडिड अते प्राइवेट स्कूलों से 1 जून तो 30 जून तक छुट्टियां का ऐलान कर दिया गया है। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होगा। अते भारत के 18 साल राहुल जाखड़ ने होंगकोंग 22वीं एशियन अंडर 20 एथलैटिक चैंपियनशिप विच मर्दा दे डेकथेनोल मुकाबले विच सोने का तमगा जितया है। सो ये सन हुण तक दियां FM न्यूज़ हेडलाइंस।

0: यार राहुल, मैं काफी दिन तो तेनू देख रहा है, तू काफी बुझा बुझा जा, उदास उदास जा लगदा है, की हो गया?
1: की दसा यार, काम दा प्रेशर इन्ना है ना, मैनू लगदा है ना मेरी जिंदगी बोझल हो चुकी है। हुण तू ही दस, मैं इदां दा की करां कि जिंदगी च बुल्ले लुट सकां ते सुकून नाल रवां।
0: लै मित्रा, घबराउण वाली नहीं कोई गल, अपने कोल इहदा वी हल
1: की
0: जे तू चाहुंदा है तेरी रूह नूं मिले सुकून ते कर मित्रा एफएम रेन।

0: खुद चो मैनू पा सकदा है तू, खुद चो मैनू पा सकदा है तू, ऐसा प्यार निभा सकदा है तू। बिन मिलिया बिन दीद करे ही, बिन मिलिया बिन दीद करे ही, मेरे तीकर आ सकदा है तू। अखां मीच के सुनदी जावां, अखां मीच के सुनदी जावां, इन्ना सोहना गा सकदा है तू। जाके आना कह जाना है, जाके आना कह जाना है, आके भी तो जा सकदा है तू। वरना जा नहीं वरना मर्जी है, वरना है जा नहीं वरना मर्जी है, बदल बनके छा सकदा है तू। खुद चो मैनू पा सकदा है तू, ऐसा प्यार निभा सकदा है तू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्यार मुहब्बत दियां सांझा पाउंदा पंजाबी विरसे नाल अबरेज पंजाबी गीतां, पंजाबी सभ्याचार दी बुकल दे विच्चों जिहड़ियां यादां ने, उहनां यादां नूं तुहाडे तक पहुंचाउण वाला प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी, जिथे दिल खोल के तुसीं करदे हो दिल दियां गल्लां। यहां स्टूडियो कड़ी से समा 9:04:47 हो चुके ने, ते प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी दा आगाज़ हो चुका है। प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी दे विच जनाब तुसी शिरकत कर सकते हो, चंगा लिखते हो, चंगा गाउंदे हो, या फिर किसी दा लिखिया गीत कविता नज़म पोएट्री थानू बेहद पसंद है, तुसी उस दियां कुछ सतरां बोल के गा के लिख के सानू भेज सकते हो, या फिर थोड़े कोल कोई सभ्याचार दे नाल संबंधित, पंजाबी इतिहास दे नाल, पंजाबी विरसे दे नाल संबंधित कुछ अजिहे तत्थ ने, कुछ अजिहे डाटे ने, या फिर कुछ अजिहा इतिहास है जिहड़ा तुहानू लगता है कि बाकियां तक जरूर पहुँचना चाहिए, तो तुसी उहदे बाबत सानू दस सकते हो, क्योंकि प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी एक अजिहा प्लेटफॉर्म है जिहदे विच तुसी दिल खोल के दिल दियां गल्लां कर सकते हो, और खास करके उस टैलेंट नू इत्थे लिया सकते हो जिहड़ा टैलेंट तुहानू लगता है तुहाडे गली मुहल्ले दे विच कोई चंगा लिखता है, चंगा गाउंदा है, या फिर किसी नू बहुत चंगी सुचजी जानकारी है जिहदे नाल समाज का भला हो सकता है, तुसी उहनां नू साडे नाल जोड़ सकते हो, क्योंकि असीं चाहुंदे हां कि साडी FM रेनबो की टीम, साडी इहो कोशिश हुंदी है कि वध तों वध दोस्तां नू इस प्रोग्राम दे विच जोड़िया जावे और इस परिवार दे विच होर भी वाधा किया जाए। सो जे तुसी चाहुंदे हो कि प्रोग्राम का समा असीं वधाईए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त सानू मैसेज करते हैं कि दिल अपना पंजाबी दे विच जिहड़ा आ समा बहुत घट मिलता है, मैसेज काफ़ी जड़े आ लिमिटेड दोस्त ही करते हैं। सो अज थानू बेनती कर रहे हैं कि जनाब तुसी भी अपने दोस्तों मित्रों तक ये मैसेज पहुँचाओ कि प्रोग्राम दे विच शिरकत कर सकते हो, चंगा लिखते हो, या फिर थानू सभ्याचार दे बारे थोड़ी जी खास जानकारी है तुसी वो साडे नाल साझा कर सकते हो, या फिर तुसी हसाउण दा वल जानते हो, गुदगुदाउण दा वल जानते हो, थोड़े कोई पुरानी बुजारता दी खजाना पिया होया, तुसी उस खजाने नू साडे नाल साझा कर सकते हो। सो थोड़े इना प्यार भरे मैसेजेस राही ही प्रोग्राम दे विच जड़ा आ ओ वादा कीता जा सकता है, ते अपना पंजाबी दा समा जड़ा आ ओ थोड़ा जिहा वधाया जा सकता है, पर जेकर तुसी वध तों वध शिरकत करदे हो, वध तों वध अपने दोस्तां मित्रां तक इस प्रोग्राम दे बाबत जानकारी पहुँचाउंदे हो। सो आ जाओ पंजाबी लाउने आ रौनकां, क्योंकि दिल अपना पंजाबी। सो पंजाबी दे विच गल्लां बातां, पंजाबी दे विच गीत। सो एक बुजारत मैं थोड़े लिए लैके आया, इस बुजारत दा भी तुसी जवाब देना है कि एक नार करतारो ओ राहे राहे जावे, सिद्धियां नाल सिद्धी चले पुठियां नूं समझावे। सो इस बुजारत दा जवाब दे सकदे हो कि एक नार करतारो ओ राहे राहे जावे, सिद्धियां नाल सिद्धी चले पुठियां नूं समझावे। सो इस बुजारत दा जवाब दे सकदे हो, या फिर थोड़े कोई बुजारत है तुसी ओ भी सांझी कर सकदे हो। सो फिलहाल 9855-10-10-27 ते साढ़े तक दोस्तों वालों भेजे हुए मैसेजेस पहुँचने शुरू हो चुके ने। आगाज़ करते हैं दोस्तों वालों भेजे हुए इन्हों मैसेजेस का, और इन्हों समा तमाम दोस्तों का स्वागत करते हैं जिन्होंने प्रोग्राम के मैसेज किया। आओ सुनते हैं पहली आवाज़ किहड़े दोस्त की है।
1: ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਹਿਲੇ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ

0: हो सकता है। सो 9855-10-10-27 नंबर है प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी दे विच तुसी दिल खोल के दिल दियां गल्लां कर सकते हो। फिलहाल एक होर वॉइस सुनते हैं।
1: दिल अपना पंजाबी पेश करता सोनी साहब, बहुत ही प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल
0: जी। थानू भी प्यार भरी सत श्री अकाल।
1: प्रोग्राम बहुत वधिया लगता है, आपकी पेशकारी वधिया है, बहुत वधिया लाजवाब है। जिवें तुसी कहा भी दोस्तों के ताईं गल पचाया करो, दोस्तों ने दस्या करो प्रोग्राम। असीं जी प्रोग्राम च दोस्तों के नाम लैंदे हैं, ते कई आर जी कह दिंदे दोस्तों के नाम ना लिया करो
0: जी।
1: वो दोस्तों के उन्होंने नाम लैंने जिन्हों को जी किसी वजह कारण कर लो कमजोरी करके गरीबी करके स्मार्टफोन की सुविधा है नहीं, तो असं उन्हें नाम पा दें तो वो बड़े खुश होंगे जी। तो इस तरह नहीं करना चाहिए भी ना दोस्तों से पाया करो, तुम जिम्मे कहा दोस्तों से गल पहुँचाओ तो बहुत वाली गल की है
0: जी। मैं थोड़ा दसदा भी तुम जे थोड़े दोस्त ने जिन्हों को मोबाइल नहीं है, तुम किसी ना किसी दिन जाके उन्होंने दिल के जोड़े जज्बात है, उन्होंने दिल दिन जी गल् है वह रिकॉर्ड करके तुम साढ़े तक पहुँचा सकते हो। तो असं भी चाहते हैं भी असी भी उस प्यारी जी आवाज़ में सुनीए जी थोड़े तक, थोड़े जरिए असी जिन्हों का नाम सुनते हैं वो थोड़े जरिए असी भी उन्होंने आवाज़ सुन सकी। उन्होंने को जाके उन्होंने आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हो, उन्होंने पूछ सकते हो भी प्रोग्राम के नाल कदों तो जुड़े हुए हो, FM रेनबो के नाल कदों तो रबता थोड़ा जुड़िया हुआ है और किवें दे थानू प्रोग्राम लगते हैं, तुसी उन्हां दी दिल दीआं गल्लां रिकॉर्ड करके किसी ना किसी दिन साडे नाल सांझा कर सकते हो।
1: एक जी तुसी 9 बजे प्रोग्राम चलता जिहड़ा जी
0: जी
1: फरमेशी प्रोग्राम
0: दिल चाहता है,
1: उहदे साडे मैसेज जमे नहीं पड़े जांदे, हफ्ता 10 दिन हो गए
0: जी।
1: इहदे बारे कुछ करो, ते जिहड़े तुसी तमाखू बारे दस्से, तमाखू तां इक बहुत ही माड़ी चीज़ है, तमाखू नाल कैंसर भी हो जांदा है, मूंह दा कैंसर ते बहुत ही भयानक बीमारियां लगदियां जी, फेफड़े दे नाल जाम हो जाते धुएं नाल, तो बहुत ही माड़ी चीज़ है ये। मैं वेख्या कि खंघते लैटर बाथरूम बिचे निकल जाता, तो इन्होंने वीर मैं बेनती करना चाहना भी तमाखू तो दूर रहो, आपकी सेहत की संभाल रखो, ये जिंदगी वार वार नहीं मिलती, वार वार नहीं मौका मिलता दुनिया से आने का, इंजॉय करो, वधिया चंगी चीज़ा खाओ। सोनी साहब मैसेज चंगा लगे तो शामिल कर देना एक बार फिर तो थानू तो सारे स्रोतियां बहुत ही प्यार से सत्कार भरी सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग जी, मैं भोला सिंह सिद्धू पिंड वड़ेंखड़ा डेढ़ मंडी डबली नाल जी, मेरे दोस्त अरविंद कुमार ते मास्टर मोहन लाल शौकी जलंधर तो
0: जी। बाकी दोस्तों भी प्यार भरी सत श्री अकाल और किसी ना किसी दिन तुम उन्होंने दोस्तों की आवाज़ भी साढ़े तक जरूर पहुँचाओ, बहुत चंगा लगेगा। बाकी थोड़ा एक थोड़ी जी तुसी शिकायत की भी थोड़े मैसेज प्रोग्राम दे विच शामिल नहीं हो रहे, सो इस गल नूं असी गौर करांगे इस गल ते और कोशिश करांगे भी थोड़े मैसेज प्रोग्राम दे विच शामिल किए जाण। किसी टैक्नीकल खराबी करके, तकनीकी खराबी करके हो सकता है भी थोड़े मैसेज साढ़े तक ना पहुँचते हो, सो फिर भी थोड़ी इस शिकायत नूं सिर मत्थे और थोड़ी इस शिकायत नूं जिन्नी जल्दी हो सके असी दूर करने की कोशिश करांगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम दे विच, इसी तरह ही अपना प्यार मुहब्बत बनाई रखो। अगली आवाज़ सुनते हैं।
2: ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਡੱਕਦਾ ਬਾਰੇ ਡੱਕੇ ਨੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਜੀ ਦਿਓਰ ਭਾਬੀ ਇਹੋ।
0: जिन्हां ने हुण तुहानू भी ला लिया इस गेम दे उप्पर इस खेड दे विच, फिर उत्थे असीं की कह सकदे आ। सो बाकी बस इन्ना ही कहना चाहुंदे आ भी छुट्टियां हुण हो चुकियां होईयां, भी कोशिश करिओ बच्चियां नूं जिहड़ा आ पंजाबी सभ्याचार नाल पंजाबी विरसे दे नाल जोड़िया जाए, उन्हां नूं बहुत सारियां बेहतरीन पंजाबी दीआं किताबां जिहड़ियां तुसीं जरूर उन्हां नूं लै के दिओ, जिहदे विच किस्से कहानियां होणगीआं, मोटीवेशनल होणगीआं, जिन्हां नूं पढ़ के बच्चियां दे अंदर एक प्रेरणा आएगी, उन्हां दे अंदर एक मोटीवेशनल दी भावना पैदा होएगी और जिंदगी दे विच कुछ कर गुजरनगे, क्योंकि जदों तुसीं उन्हां नूं किताबां लिया के देवोंगे तुसी खुद पढ़ोगे अपने आप थोड़े वाल देख के वो जरूर गौर करनगे, जदों जदों उन्हां दा फिर इंट्रस्ट बनता गया अपने आप फिर किताबां दे पन्ने फरोलदे जाणगे, ज्ञान दे विच वाधा करदे जाणगे और जिंदगी दे विच शिखरां दे उपर पहुँचते जाणगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी सो एक होर मैसेज साढ़े तक पहुँचा है कि भरजाइयां जो मर्जी कहण पर ननदां आथण वेले अखीरली मोटी रोटी जरूर पकाउंदियां ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਕਤ ਪਵੇ, ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਸੋ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ

0: बैठ के गीत गाइए आरे आहे तिवी जिंदगी माण दे सानू थपना गुरु गोबिंद सिंह जी शीस तली ते रखना जान दे तत्ती तवी ते बैठ के गीत गाइए आरे आहे तिवी जिंदगी माण दे शीस गंज गड़ी चमकौर वाली सानू अज भी जुझना दस देने जाके पुछ लो कंध सरहंद जी नू बाल चीने हुए किदा हस देने जाके पुछ लो कंध सरहंद जी नू बाल चीने हुए किदा हस देने वीर मनु ने वाडिया लख पाइया असी फिर भी खिड़े गुलजार वांगू बड़े सिरां दे जदों सी मुल पेंदे होए हौसले साडे अंगियार वांगू।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी बहुत ही प्यारी आवाज़ दे विच धार्मिक गीत सुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो प्रोग्राम दे विचों जिहड़ा आ समां हो गया है कि थोड़े तो इजाज़त लैण दा, पर जांदे जांदे मैं तुहानूं दस्सांगा कि एक बुझारत जिहड़ी मैं पाई सी वी इक नार करतारो ओ राहे राहे जावे सिद्धियां नाल सिद्धी चले पुठियां नूं समझावे। सो इहदा जवाब सी कंघी, और जिहड़ी फिल्म दे मैं डायलॉग सुनाए सन जिन्हां दोस्तां ने जवाब दित्ता है, फिल्म दा नाम सी तेरी मेरी इक जिंदड़ी, डायलॉग सी धर्मेंद्र जी दे और मेहर मित्तल साहब दे। सो ई सी अज दा प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी, और दिल अपना पंजाबी दे विच जिन्हां भी दोस्तों ने मैसेज की उन्होंने तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी वक्त फिर किसी वेले थोड़े नाल फिर तो होएगी मुलाकात, तद तक दे लई तुसी रखना है अपना ढेर सारा ख्याल और सुनते रहना है खूबसूरत गीतां सफर FM रेनबो दे नाल।

फड़ा दे मैनू, एक बार ते फड़ा दे मैनू। फड़न दी गल कीती इस वास्ते, फड़न नू मेरा चित करदा, मैं तैनू छेड़ा इस वास्ते, छेड़न नू मेरा मेरा चित करदा।

हाँ जी, की हाल चाल ने जनाब? उम्मीद है कि तुसी सारे ही ठीक ठाक होगे। वीकेंड वाली वाइब, संडे दा दिन ते आज महीने दा आखरी दिन ते तुहाडे नाल गल्लां करन दा मौका मिल जाए जी। मैं क्या इस तो वधिया, इस तो खूबसूरत गल होर की हो सकती है। ट्यून इन कीता हाँ जी तुसी 102.7 FM रेनबो, ते मैं हाँ जी थोड़ी अपनी साक्षी लेके आ गई हूँ प्रोग्राम जिदा थानू सारिया नू ही रहिंदा है बेसब्री दे नाल इंतजार। प्रोग्राम दा नाम गीत बहार। जिथे हर रोज़ 10 तो 11 खूबसूरत गीतां दी तुहाडे लई बहार जिहड़ी है तैयार हुंदी है। नवे नवे गीत, पुराने गीत, हर तरह दे गीत इस खास प्रोग्राम दे विच शामिल हुंदे ने। ते अज दी जिहड़ी प्लेलिस्ट है ओह भी बहुत ही अपने आप दे विच वधिया जी है, एनर्जेटिक है, वर्सटाइल है। बहुत सारे सिंगर्स जिहड़े ने उहनां दी आवाज़ां अज इस खास प्रोग्राम दे विच तुहानू सुनन नू मिलनगियां। बट गीतां दे नाल नाल गल्लां दा स्वाद जिहड़ा है ना, ओह भी पूरा पूरा आएगा। यानी कि गीतां दे नाल नाल गल्लां भी बहुत सारे टॉपिक्स ते अज तुहाडे नाल होणगियां। सो बने रहना इदां ही 102.7 FM रेनबो ते मेरे यानी कि साक्षी दे नाल। फिर मैं क्या जी, अज संडे वाले दिन तुहाडे नाल स्पैशली गल्लां करन आई हां, तो फिर गाने की शुरुआत भी एक खूबसूरत जे गीत दे नाल ही होनी चाहिए है। नीति मोहन ते अरमान मलिक की आवाज़ दे विच प्यारा जिहा म्यूजिकल ट्रैक आ रहा जी तुहाडे रेडियो सैट ते।

0: डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्स 100.6 मेगाहर्ट्स विविध भारती 103.6 मेगाहर्ट्स अमृतसर 100.9 मेगाहर्ट्स अते 100.8 मेगाहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण तो थोड़ी देर बाद मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दा देशवासियां लई प्रसारण मन की बात साडे दिल्ली केंद्र तों प्रसारित कीता जावेगा।
1: आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और यूट्यूब पर भी उपलब्ध।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किट बैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किट बैग।
7: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
8: फ्री ट्रिप टू दुबई
9: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं।

0: नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
0: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
0: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
4: नमस्कार सर। नमस्कार।
5: नमस्कार सर।
3: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
4: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूं, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूं। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया, एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
3: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
6: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ, और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली, जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया, तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा भी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी

0: गेम स्पोर्ट्स में सीखा था, तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
0: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है, और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारी

0: हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलियान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम,

मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के

शासन काल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया।
साथियों,

ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे

और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूं। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूं गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूं जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयास

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
4: मीडियम वेव 343.6।

यूज़ करने चाहिए ने। हैवी फर्टिलाइजर्स गर्मियाँ दे विच प्लांट्स नू ज़्यादा स्ट्रेस दे सकते ने। सो बाकी हीट रेजिस्टेंस प्लांट्स जिहड़े हैगे ने जिहड़े गर्मियां दे मौसम दे विच चंगी तरह ग्रो हो सकते ने उन्हां नूं सानूं चूज़ करना चाहिए इस मौसम दे विच ज़्यादा तो ज़्यादा लगाना चाहिए जिन्हां दी हीट टॉलरेंस जिहड़ी पावर हैगी उह ज़्यादा हुंदी है। उन्हां विचों गल करिए तां टमाटर हैगी है भिंडी दा आपां लगा सकते हैं पौधा या फिर हरियां मिर्चां ते या फिर लौकी आपां जिहनूं कद्दू कह दिंदे आ उह वी ऐड कर सकते हैं गार्डनिंग दे विच। सो यह सोहनिया सोहनिया चीज़ा जदों साढ़े किचन गार्डन दे विच घर की छत लगिया होनगियां देखने भी सोहनिया लगनगियां ते नाल ही नाल असी ऑरगैनिक सब्जियां भी खा सकते हैं। मतलब इन्हां दा फ्लेवर जिहड़ा हुंदा इन्हां दा स्वाद वो वक्खरा ही हुंदा बाजार तो मिली हुई सब्जियां नालों। नाले अपने हत्थां दे नाल जदों असी कोई पौधा लगाने आ वो वड्डा हुंदा है उत्तों सब्जियां तोड़ के खाने आ ते फिर मैं कहा जी एक वक्खरा ही स्वाद है उहदा स्वैग है। आके मतलब हर बार थोड़े नाल एक फूड रेसिपी तो शेयर करती हाँ बट एक वधिया जी अज एक ड्रिंक रेसिपी भी शेयर करांगे। मतलब मैं क्या हूँ इस मौसम दे विच गर्मी दे मौसम दे विच जदों मैं तुहानू गल्लां कर रही हुंदी हाँ ना कुछ अच्छी जी ड्रिंक जिहड़ी आ पीण ते मन करदा है तो फिर वह कि है आके तुहानू दसदी हाँ तुसीं भी अज ट्राई कर सकते हो बहुत ही डिफरेंट तरीके दी है ते नाल दे नाल वह हैल्दी भी है। बस इदा ही ट्यून इन करके रखो 102.7 FM रेनबो ते अगला गीत आ रहा जी बागी 4 मूवी तो थोड़े रेडियो सेट ते।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा। लड़ीवार
0: नाटक होया।

0: घर खर्चे दे पैसे दियो हस्बैंड जी।
1: ए राशन दे 15,000, सब्जियां दे 2,000
0: ते बिजली दे बिल दे
1: हुन 0 रुपए की मैं दवा।
0: ओहो भुली गई सी, हुन ता सोलर पैनल लग गए है ना, ता फिर जो बाकी बचे हुए 4,000 ने उसकी शॉपिंग करन चलिए।
1: जरूर, पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: सर तुसी पर्सनल लोन लेना?
4: फिर तो यार इनू तो ब्लॉक ही कर देना।
3: सर दुबई दी फ्री ट्रिप।
4: इनू भी ब्लॉक, किन्नेयां नू ब्लॉक करी जावां यार।
5: सिर्फ फोन ते ब्लॉक करना स्पैम खत्म नहीं हुंदा, हर बार नवा नंबर आ जांदा है।
4: तां फिर की करां?
5: कॉल पिक कर, फिर ट्राई DND ऐप ते रिपोर्ट कर, कैटेगरी सिलेक्ट करो, बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस ते सबमिट करो, बस कुछ सेकंड्स दा काम है।
4: मतलब सब दा स्पैम कट जावेगा?
5: हां, रिपोर्ट मिलदे ही एक्शन हुंदा है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करो। ट्राई DND ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर तों, ते रिपोर्ट करना शुरू करो।

वंस अगेन वेलकम बैक है जी ट्यूनिंग के तहत 102.7 FM रेनबो प्रोग्राम चल रहा है जी होम स्वीट होम ते मैं हाजी थोड़ी अपनी साक्षी थोड़े नाल। वैल कपड़िया नूं किद्दां असीं मतलब इस गर्मी दे मौसम दे विच सही तरीके दे नाल धो सकदे हां, फिर उस तो बाद जे घूमन फिरन जा रहे हां ते कीड़ियां चीज़ां माइंड दे विच रखनियां ने, ते मिठी मिठी लस्सी जिहड़ी है उहदी रेसिपी वी तुहाडे नाल शेयर कर ली है। मतलब इन्नी सारियां गल्लां कर लईआं ने मैं कहा हुण टाइम जिहड़ा हो गया यानी कि दुपहर दे लंच दे विच अज असीं की प्रिपेयर करके खा सकदे हां उहदा जिक्र वी ज़रा कर लिता जाए। हुण की इहदे किन्ने सारे फायदे ने, मतलब सानू सारयां नू पता है कि बहुत अच्छा साडे गट हैल्थ दे लई, साडे स्टमक दे लई, साडे पेट नू ठंडा रखता है। पर घर दे विच कुछ बच्चे हुंदे ना जिन्हां नू किया नहीं पसंद हुंदा, मतलब किया सुन के ही उहनां दा नक जिहड़ा ना सुकड़ जिहा जांदा। पर अज की जिहड़ी रेसिपी तुहाडे नाल शेयर करन जा रही हां, मतलब इस तरीके दे नाल उन्हां नू किया खिलाओगे उन्हां नू पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने किया खाधा है। ते नाल ही नाल जिहड़े इहदे फायदे ने, लौकी मतलब जिहनू किया कह दिंदे आ, लौकी कह दिंदे आ, ते ओह वी उन्हां नू मिलणगे। रेसिपी का नाम है लौकी राइस। मतलब इंटरनेट पर भी बहुत सारे सैलीब्रिटीज़ ने भी यह चीज़ मनी है कि उन्होंने लौकी खानी जिहड़ा किया हैगा बहुता पसंद नहीं है, पर इस तरीके दे नाल ओह बड़े आसानी दे नाल खा लैंदे ने। और मैनू कोई नवी नवी चीज़ पता चले और मैं ट्राई करा तो फिर मैं थोड़े नाल शेयर ना करा कि हो सकता है। सो लौकी वाले चावल बनाने लई सानू की चाहिए, एक कप चावल चाहिए ने घर दे विच रोज़मर्रा दे विच, जेड़े भी तुसी चौल यूज़ करते हो उन्हां दा इस्तेमाल कर सकते हो। इहदे नाल ही नाल दो कप जेड़े हैगे ने घीए दे, लौकी दे सानू छोटे छोटे बरीक टुकड़े कट्टे हुए चाहिए ने। एक प्याज बरीक कट्टिया होया, एक टमाटर बरीक कट्टिया होया, एक हरी मिर्च कट्टी हुई, ते नाल ही नाल एक चम्मच अदरक लसन दा पेस्ट। ते सब्जियां दे विच ए चीज़ां सीगियां, ते नाल ही नाल मसालियां दी गल करिए ता अद्धा चम्मच जीरा, ते उस तो बाद 1/4 स्पून जिहड़ी हैगी है हल्दी चाहिए है, हाफ स्पून चाहिए हैगा है मिर्च पाउडर, हाफ स्पून ही सानू चाहिए जी गरम मसाला, दो चम्मच तेल या फिर घ्यो जिदे विच भी तुसी बनाना चाहते हो, दो कप पानी दे, स्वाद अनुसार नमक, ते गार्निश वास्ते जी ढेर सारा हरा धनिया।

जी ट्यून इन कीता है तुसी 102.7 FM रेनबो प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़ ते मैं हाँ जी तुहाडी अपनी साक्षी तुहाडे नाल। कहिंदे है कि प्रकृति ने कभी शोर नहीं किया फिर भी सबसे सुंदर वही लगी। फूलों ने कभी खुद की तारीफ नहीं लिखी फिर भी लोग उन्हें किताबों में रखते हैं। शायद सुकून हमेशा उन्हीं चीज़ों में होता है जो खुद को साबित करने में नहीं लगी होती। उसी तरह दे ऐ गीत ने जो कि हमेशा ही साडे दिलां नूं जिहड़ा सकून देण दा काम करदे ने। अगला गीत आ रहा है अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती। एल्बम सी बेटी बेटे ते आर्टिस्ट इहदे विच जिन्होंने गाया मुहम्मद रफ़ी ते सुमन कल्याणपुर ते म्यूजिक डायरेक्टर की गल करिए शंकर जयकिशन। गाने नूं लिखिया हसरत जयपुरी जी ने। आई होप तुहानूं इह जिहड़ा गाना है बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है।

वंस अगेन वेलकम बैक है जी ट्यून इन के तहत 102.7 एफएम रेनबो प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज कर रहे हो तुसी एंजॉय मेरे यानी कि साक्षी दे नाल। कहते हैं अच्छाई देखकर पसंद करना लगाव है, अच्छाई देखकर पसंद करना लगाव है, कमियां जानकर भी साथ निभाना ही सच्चा प्यार है। बिल्कुल, जदों असी किसी की कमियां जानते हुए भी उन्होंने नाल जुड़े रहने हमेशा, असल च तो सच्चा प्यार उ ही है। और जदों उस प्यार दे विच सामने वाला कदी नाराज़ हो जाए, साढ़े तो दूर जाने की गल करे, तो वह रुठे हुए नूं मनाना भी अपने आप दे विच एक वक्री ही कला है। सो इदा दा ही अगला गीत लता जी की आवाज़ दे विच अजी रूठ कर तुम कहाँ जाइएगा।

0: दिल को आज भी पुराने रास्तों की खुशबू याद है, वो मिट्टी, वो आंगन, वो बेफिक्री, हंसी और वो लोग जो अब सिर्फ यादों में रहते हैं। शायद इसीलिए इंसान लाख आगे बढ़ जाए, दिल अक्सर पीछे छूटे हुए दिनों में ही सुकून ढूंढता है। हम बेखुदी में भी तुमको पुकारे, रफी साहब की आवाज से विच खूबसूरत जा गीत आ रहा जी तो हड्डी रेडियो सेट पे।
1: एक कंपोजर को दूसरा कंपोजर कॉम्प्लीमेंट करते थे और एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करते थे। जैसे हमने सुना है कि सचिन दा ने जब एक गाना बनाया था हम बेखुदी
2: में तुमको पुकारे चले,
1: हाँ, तो रोशन साहब को इतना पसंद आया था कि उन्होंने फोन किया था और बोला था कि बहुत ही प्यारा गाना बनाया है और मैं भी ऐसा एक बनाना चाहूँगा। वो कॉम्पिटिटिव फील थी और मतलब उनको अप्रिशिएट करना कितनी खूबसूरत बात है जो आजकल नहीं है।

जी प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मेलोडीज स्टूडियो की कड़ी के विच टाइम हो चुका है 1:35 ते 25 सेकेंड। अगला गीत जो आ रहा है तुहाडे रेडियो सेट ते फ्रॉम द मूवी आए मिलन की बेला। टाइमलेस सॉन्ग जो है जिदे विच प्यार भी है ते प्योर सेल्फ प्रेयर भी अपने आप दे विच। सुनते हैं जी गीत लता जी की आवाज़ दे विच।

लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं इस सफ़र में, वो कुछ और दे या ना दें, अपनी यादें छोड़ जाते हैं घर में। वो लब से कुछ कहें या ना कहें, पर यादें बहुत कुछ कह जाती हैं। इंसान दूर हो जाए लेकिन उसकी परछाई हमेशा साथ रह जाती है। FM 102.67 MHz से है आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल, और आगाज हो चुका है जी आज दे प्रोग्राम दिल आज शायर है दा। रोज़ दोपहर 2 बजे प्रोग्राम प्रसारित होंदा है जी आकाशवाणी जलंधर दे इस चैनल दे, और तुसी इंजॉय करते हो इस प्रोग्राम नू। और ये प्रोग्राम

धुंधली सी यादों का एक कारवां है, इन आँखों में अब भी ठहरा हुआ समा है। भूलना चाह जिसको वो और पास आया, हर पल हमें बस उसी का एहसास दिलाया। कटते नहीं दिन और रातें हैं सुनी, दिल में छिपी है कोई अनकही कहानी। दोस्तों एक शायरी और भेजी है सानू, आओ देखते हैं किन्होंने भेजी है। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। फिल्म दिल आज शायर है विच सर कुलदीप जी, बलविंदर सरा पिंड मोरजन सिक्का हनुमानगढ़ तो ये लिख रहे ने। दिल न जाने तुमको क्यों याद कर रहा है, फिर से चाहत की फरियाद कर रहा है। जख्म अब तक नहीं भरे हैं किसी बहाने से, हालात तो पूछो आकर अपने दीवाने से। संगरूर तो भी एक मैसेज आया साढ़े को, किक्की तिमान जी ने मैसेज किया है, लिख रहे ने। पतझड़ में ही परख होती है रिश्तों की, पतझड़ में ही परख होती है रिश्तों की, बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। वाह जी वाह, क्या लिखा है जी इन्होंने, बहुत ही प्यारी शायरी है लिखी है इन्होंने जी, किक्की तिमान जी संगरूर तो जी। और तुसी भी अपनी शायरी है साढ़े को भेज सकते हो, नंबर द्वारा दस दिना जी 9855 10 10 27 9855 10 10 27। अपनी लिखी हुई शायरी या किसी नूं भी कोई भी कविता जिहड़ी डेडिकेट करना चाह रहे हो साढ़े कोल भेजो, और मैं अपने अंदाज़ दे विच उसनूं पेश करांगा और तुहाडा जिहड़ा मैसेज है इस प्रोग्राम दे विच शामिल करांगा। प्रोग्राम चल रहा है जी दिल आज शायर है, दोस्त है तुहाडा जी कुलदीप। आओ सुनदे हां अगला ट्रैक तलत अजीज जी दी आवाज़ दे विच, प्यार तुम्हारा।

0: आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: पान, तंबाकू, खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, न जाने कितने ही फॉर्म्स में आजकल लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जबकि जानते हैं कि तंबाकू खाना सेहत के लिए कितना जानलेवा है। जानबूझकर कुएं में गिरने में कितनी समझदारी है, जानेंगे हम आज के रेडियो डॉक्टर में। हमारा आज का विषय है ओरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू टोबैको यूज, यानी कि तंबाकू खाने से होने वाली मौखिक समस्याएं। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विक्रांत मोहंती, जो प्रोफेसर एंड हेड हैं पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री मौलाना आजाद मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज न्यू दिल्ली से। और आपके साथ हूं मैं आरजे रश्मि गुप्ता। डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में।
3: धन्यवाद रश्मि जी। और आई थिंक मौखिक स्वास्थ्य और तंबाकू सेवन का बहुत ही अटूट रिश्ता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे
2: जी। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े, एक छोटी सी बात यही कि तंबाकू सेवन से किस तरह से हमारी

0: मोरल प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं।
1: जी रश्मि जी, एक्चुअली ये एक ऐसी चीज है, जैसे मैं आपको डेंटल प्रॉब्लम्स या जो मौखिक बीमारियां जो तंबाकू सेवन से होती हैं उसके बारे में ज्यादा बोलने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि और सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि तंबाकू सेवन जो है वो एक एडिक्शन है जिसको, और ये क्लासिफाइड बीमारी है, मतलब एक डिसऑर्डर है, मेडिकल कंडीशन है जो क्लासिफाइड है, और इसके सेवन से भी नुकसान होता है। जब आदमी इसको सेवन करके एडिक्टेड होता है तब छोड़ने पे भी विड्रॉल सिम्टम्स होती हैं। तो जरूरी ये है पहली बात ये जानना कि तंबाकू सेवन जो लोग सोचते हैं, चाहे वो धूम्रपान के रूप में किसी भी फॉर्म में हो या फिर जो निर्धूम या फिर जो स्मोकलेस टोबैको जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके जैसे मसाला गुटखा खैनी पान और अलग अलग मसाले आते हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो भी सब तंबाकू के अंडर ही आते हैं। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले किसी भी तरह का सेवन, एक्सटर्नल जो भी स्टिमुलेंट है अगर हम लोग मुंह में लेते हैं तो उससे ना शुरुआती लक्षण जो होती हैं वो, खास करके आपके दांत नॉर्मली सफेद होते हैं, शुरुआत में क्या होता है सफेद दांत जो है वो धीरे धीरे करके उनका रंग जो है बदलना शुरू होता है। उसके बाद धीरे एक बार दांतों का रंग जो है नॉर्मली जैसे क्रीमी व्हाइट होता है या फिर सफेद होता है, तो वो रंग जो है वो धीरे धीरे रंग बदलता है पीले से और फिर आगे जाके काला या फिर भूरे रंग का हो जाता है। उसके बाद अगला जो है फिर वो मसूड़ों की बीमारियां शुरू होती हैं, और मसूड़े जो होते हैं वो हमारे दांतों के चारों तरफ जो बाहर दिखने वाला जो क्राउन पोर्शन जो सतह हमें दिखती है अपने दांतों में, तो उस चीज को पकड़ के रखता है और उसको मसूड़े वहां पर जो है सपोर्ट करते हैं, और वो जो है फिर वो इस जो उसके जैसे हम लोग सिगरेट लेते हैं, सिगरेट के धुएं से जो गर्मी पैदा होती है या फिर तंबाकू का सेवन जो गुटखा खैनी के रूप में लेते हैं उससे जो जो जो रस निकलता है वो सब इरिटेट करता है या फिर नुकसान पहुंचाता है हमारे मसूड़ों, और उससे होती है मसूड़ों की बीमारियां। तो ये हैं सब शुरुआती जो बीमारियां जो मुख में जो चेंजेस होते हैं वो इस तरह से दिखना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप तंबाकू के जकड़ में आ जाते हैं पूरी तरह से और कंटिन्यूअसली इसका सेवन करते हैं, क्योंकि इनिशियल जो शुरू करते हैं वो धीरे धीरे करके शुरू करते हैं, बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ टाइम बढ़ा देते हैं लोग, उनको याद ही नहीं आता कि कितने पिए उन्होंने, सिगरेट कितने पिए, बीड़ी कितने मारे या फिर खैनी और गुटखा कितनी बार खाया, क्योंकि उनके मुंह में हमेशा चलता ही रहता है और उसका जो रस निकलता है वो अपने आप में हानिकारक होता है। तो तंबाकू में जैसे मैंने आपको बताया पहले दांतों का रंग बदलना, उसके बाद मसूड़ों की बीमारियां होना, और धीरे धीरे जब मसूड़े फूल के उसमें से खून निकलना आए तरीके, मतलब आप जस्ट ब्रश करिए उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है, तो ऐसा होता है कि उसके बाद मसूड़ों की जकड़ जो है ना वो कम हो जाती है और दांत भी हिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं, जैसे आप हम आगे बढ़ेंगे मैं इनके बारे में और भी जानकारी देना चाहूंगा आपको।

0: तंबाकू खाने से होने वाली मौखिक समस्याएं, यदि आप भी तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपके जान ले, ये केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। और सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि जो तंबाकू सेवन से ये शुरुआती लक्षण जो होते हैं, शुरुआत में ही जो लोग इसे खाना शुरू करते हैं उनके दांतों का रंग बदलना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे मसूड़ों की समस्या शुरू हो जाती है, तो क्या इनके अलावा और भी कुछ सिम्टम्स या लक्षण होते हैं कि जिनसे पहचाना जा सके है कि हाँ ये तंबाकू उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है?
1: जी जी, बहुत बहुत जरूरी है जानना, बिकॉज क्या है कि ये एक, जैसे मैंने आप शुरुआती लक्षण बताया, इसके आगे कैसे होता है कि तो दांतों के जो हड्डी के अंदर जो होती है, हड्डी का गलना भी शुरू होता है और उससे पहले जो तंबाकू का सेवन जो करते हैं, जो लोग सेवन ज्यादा करते हैं, उनमें ये दांत के जो हड्डी कमजोर होने से दांत समय से पहले गिर भी सकता है। मतलब उसको वी कैन टूथ लॉस जिसको बोलते हैं, या दांतों का समय से पहले गिर जाना भी संभव है तंबाकू जो सेवन करते हैं।
0: सॉरी सर, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारे एक कॉलर लाइन पर आ गए हैं, तो इससे पहले कि हम आगे कुछ बताएं हम उन्हें लाइन पर ले लेते हैं।
1: श्योर
0: जी, कौन बोल रहे हैं, आपका नाम बताइए और आपका सवाल पूछिए।
2: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
2: मेरा नाम नीरज चौरसिया है और मैं ब्लाइंड हूँ, संत नगर दिल्ली से बोल रहा हूँ।
0: जी,
2: मेरे दांतों में नीचे ऊपर दोनों साइड दर्द होता है, अजीब सा दर्द होता है, जैसे लगता है मैजिकली थोड़े दिन सही रहता है, थोड़े दिन बाद फिर चालू हो जाता है।
1: जी नीरज जी, मैं समझ रहा हूँ कि आपको दांतों में दर्द है और आपको कभी रात को दर्द होता है और कभी कभी दर्द होता है और कुछ दिन तक रहता है। लेकिन देखिए, सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि आपको जो निकटतम आपके जो डेंटल प्रोफेशनल, जो दंत चिकित्सक हैं, आपको उनके पास पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी जाँच करने के बाद ही पता लग पाएगा कि इसका कारण क्या है। अगर उसमें दांतों में सड़न हो गई है तो जी,
2: थोड़े दिनों बाद मैं दिखा के आया था डॉक्टर को, तो उन्होंने दर्द की दवा लिख दी थी और पेस्ट लिख दिया था, मैंने किया, फिर से मेरे दांतों में दर्द चालू हो गया। रोटियां अपने आप खिंचाव से दांतों के बीच में फंस जाती हैं।
1: ठीक है धीरज जी, देखिए दो तीन तरह का से प्रॉब्लम हो सकता है। एक है जैसे मसूड़ों की बीमारियों, दांतों के बीच में जगह बन जाने की वजह से खाना फंसना, और उस तरह ये एक रूटीन प्रॉब्लम है जो लोगों में दिखता है। तो सफाई, उसको क्लीन, मतलब डेंटिस्ट के द्वारा उसकी सफाई करवाना, और उसके बाद बराबर से आपको ब्रशिंग कैसे करना है वो तरीका आप सीख के जाइए, ताकि आप समय सही तरीके से ब्रश करके उन जगहों को साफ रख सके जहां पर खाने फंसने की संभावना ज्यादा है। और उसके अलावा जो दर्द का है, दोबारा आप जाइए एक बार डेंटिस्ट के पास जाइए, जो भी निकटतम है, या फिर हमारे अस्पताल में आके दिखाइए और वहां पर इसका सही से इलाज करवाइए।
0: जी, तो मुझे लगता है नीरज जी को बिल्कुल अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जैसे कि डॉक्टर साहब पहले बता रहे थे कि जो लक्षण आप बता रहे थे कि दांत गिरने भी लगते हैं या जो दांत की हड्डी है वो कमजोर होने लगती है, तो एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। चलिए, इससे हम, मतलब अच्छा लगता है जब हमारे जो लिसनर्स हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं और कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सॉल्यूशन आपको मिलता है हमारे इस प्रोग्राम के द्वारा, तो सच मानिए हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे कॉलर लाइन पर हैं। जी हेलो।
3: जी
0: जी, कौन बोल रहे हैं आप? सर आपका नाम बताइए।
3: मैं जयकिशन अग्रवाल, साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइए। जी
3: मेरा ये कहना है कि जो नॉर्थ इंडिया वाले सतोरा साथ में रखते हैं, अपने साथ लेके चलते हैं सुपारी, सूखी सुपारी,
0: जी,
3: उसमें चूना और तंबाकू डाल के वो लोग खाते हैं, तो वो कहते हैं कि इससे चूना भी जाता है हमारे को, तंबाकू भी जाता है और दांत हमेशा मजबूत रहते हैं। तो क्या दांतों को कैल्शियम की एक तो बहुत जरूरत होती है, इससे नुकसान होता है फायदा होता है? दूसरा मेरा ये कहना है कि जो बीड़ी है, बच्चा बच्चा बीड़ी पीता है, बड़े लोग बीड़ी पीते हैं, गरीब आदमी बीड़ी पीता है, बड़ा आदमी कहता है सिगरेट पीता है, वो बहुत महंगे सिगरेट पीता है, सिगार पीता है, कहते हैं उससे तो कभी नुकसान होता ही नहीं।
0: जी
3: तो क्या ये बस सच है या गलत है?
1: जी,
3: ये दो बातें मेरी हैं।
1: जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए, दोनों सवालों का जवाब मैं तो जल्दी दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, कैल्शियम के सोर्सेज, मतलब और भी तरीके हैं कैल्शियम अपने शरीर में लेने के लिए, दूध और उस तरह से बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो आप, पनीर है, बाकी सब बहुत सारे प्रोटीन और फिर नॉन वेजिटेरियन आइटम भी हैं, सब कुछ आप मिला के एक, अगर आदमी वेजिटेरियन है तो अलग तरीके से कैल्शियम का सपोर्ट ले सकते हैं और जो नॉन वेजिटेरियन वो अलग तरीके से ले सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो तंबाकू का सेवन चूना और इसके साथ खाते हैं, देखिए वो किसी भी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इसका नुकसान शायद आज उनको पता नहीं लग रहा, लेकिन धीरे धीरे करके दांत सख्त नहीं होंगे, मसूड़े बिल्कुल सख्त नहीं होंगे, अभी उनको वो एहसास हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके उसके उसके जो जो जो उसका जो प्रकोप है वो दिखना शुरू हो जाएगा। सो नंबर वन ये है। नंबर टू ये है, बीड़ी जो है, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, आप कुछ भी बोल लीजिए, सारे के सारे सेहत के लिए आज नहीं तो कल हानिकारक हैं। वो आपको आज शायद दिखेगा।

0: नहीं, लेकिन कुछ ही सालों में इन सभी व्यक्तियों जो इनका सेवन करते हैं उनमें इसके लक्षण और साथ साथ उसका असर भी दिखना शुरू हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने लक्षण भी बताए और लेकिन साथ साथ ओरल प्रॉब्लम्स मतलब या तंबाकू खाने से और क्या क्या समस्याएं, क्या बीमारियां हो सकती
0: जी, मैं बहुत जल्द बताता हूँ। जल्दी देखिए, एक जैसे मैंने अभी तक बता चुका हूँ जो लक्षण हो चुके हैं, उसके अलावा जैसे मुंह में छाले पड़ना, तो वन ऑफ द रीजन, एक कारण बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ऐसा छाले जो तंबाकू के सेवन से पड़ते हैं, खास करके उन जगहों पे जहां पर तंबाकू किसी तरह से रखा जाता है, चाहे गुटका खैनी रखते हैं, उससे भी ये छाले पड़ सकते हैं। और ये छाले ऐसे होते हैं कि वो भरते नहीं है, जल्दी भरते नहीं है, और इनका जो इसकी वजह से जलन होती है, खाने खाने में दिक्कत होती है, और साथ में नॉट ओनली दैट, उसके बाद जो आपके अंदर के जो मांसपेशियां हैं वो सख्त होना शुरू होते हैं। जब वो सख्त होना शुरू होते हैं तो नॉर्मली हमारी मुंह जो है वो 3 उंगलियों के बराबर खुलता है, धीरे धीरे करके जब वो सख्त, उसके जो मांसपेशियां सख्त होना शुरू होती हैं, उसकी वजह से मुंह का खुलना भी कम हो जाता है और दिक्कत होती है बोलने में, यहां तक कि खोल के ठीक पानी मुंह साफ करने में या खुला करने में भी दिक्कत होना शुरू होती है। और इसको हम कहते हैं ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जो खास करके मसूड़ों के मांसपेशियों के सख्त होने की वजह से होता है। उसके अलावा सफेद धब्बे और लाल धब्बे भी पड़ते हैं जहां पर हम लोग, जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया या एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, ये कैंसर से पहले के होने वाले लक्षण हैं। और अगर हमने ध्यान नहीं दिया गया, ये सेल्फ एग्जामिनेशन या फिर खुद आईने के शीशे के सामने भी आप जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कोई इस तरह का धब्बा जो हट नहीं रहा हो और काफी 3 हफ्ते से ज्यादा आपके मुंह में हो गया हो, तो आपको तुरंत दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर के शुरुआती लक्षण है। और अगर इसको छोड़ दिया और ऐसे ही तंबाकू का सेवन करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि मौखिक कैंसर या मुख कैंसर, जिसको हम लोग ओरल कैंसर बोलते हैं, वो होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तंबाकू सेवन करने वालों में।
1: सर, मुंह का कैंसर में मतलब केवल एक कहाँ का एग्जैक्टली हम बोले कि गले में हो जाता है, गाल में हो जाता है, या इसको मतलब कंप्लीट ये सारे ये जो अंग हैं हमारे शरीर के वो सब इससे प्रभावित होते हैं?
0: ज्यादातर तो सभी प्रभावित होते हैं एक तरीके से, लेकिन खास करके उन जगहों पे जहां पर हम गुटका खैनी बीड़ी की वजह से तो अलग अलग जगहों पे हो सकता है, जैसे गले में भी हो सकता है, लेकिन गुटका खैनी की वजह से खास करके इस तरह के जो मसाले वाले जो तंबाकू पदार्थ हैं वो उन्हीं जगहों पे होता है जहां पर इसको रखा जाता है खास करके।
1: जी, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो।
2: हाँ जी, हेलो।
1: हेलो जी, आपका नाम बताइए और कहाँ से आप बोल रहे हैं बताइए।
2: जी, मेरा नाम दिवाकर है, और डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी सर, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि आपने बताया कि दांतों में कई प्रकार की तकलीफें हो जाती हैं, हर उम्र में हो रही हैं
0: जी।
2: तो बेसिकली सवाल मेरा ये था सर कि जैसे हम लोग केयर करना चाहते हैं दांतों की, मतलब ऐसे कोई बीमारी जिस चीजें ना आ सके
0: जी,
2: तो अब मतलब एक डॉक्टर एक मेडिकल साइंस क्या कहता है कि हम किस तरह से रोज ब्रश तो कर ही रहे हैं सर, लेकिन कुछ आप थोड़ा हमें वो बताएं जैसे केयर कैसे करें, क्या ध्यान रखना चाहिए जरूरी।
0: जी जी दिवाकर जी, जी जरूर बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहली बात ये, जैसे मैंने अभी बताया, तंबाकू का किसी भी तरह से सेवन नहीं करना चाहिए, नंबर एक। नंबर टू, जो ब्रशिंग जो करते हैं सही, मतलब आपको ये याद रखना है कि ब्रश दिन में 2 बार करना है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। और उतना ही नहीं, हर बार जब आप ब्रश करें 2 से 3 मिनट सही तरीके से, कई बार ब्रशिंग तो सब लोग करते हैं लेकिन तरीका गलत होता है, कई बार जोर ज्यादा लगाते हैं, कई बार मंजन का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जरूरी यह है ध्यान रखें कि रेशे जो हैं ब्रश के मुलायम हो और आप नरम हाथों से, अपने हाथों से बहुत ज्यादा दबाव न डालते हुए सही तरीके से ब्रश करें। इसकी सही विधि और प्रणाली होती है जिसको आप अपने दंत चिकित्सक से आप सही तरीके से सीख सकते हैं। तो दिन में 2 बार ब्रश करना है, सुबह और रात को सोने से पहले, और ब्रश जो है टूथब्रश जो है हर 3 महीने में एक बार उसको चेंज करना जरूरी है। और अगर आप समय से पहले आपका टूथब्रश खराब हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। उसके अलावा एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि आप जब भी खाना खाएं तो खुल्ला जरूर करें और अपने उंगली से, साफ उंगली से आप अपने मसूड़ों को भी थोड़ा मालिश करें। तो और उसके लास्ट एक और सजेशन ये है, आपका उपाय ये है कि हर 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको डेंटल जो दंत चिकित्सक है उनसे जांच, आपके जस्ट एक चेकअप कराना, रूटीन चेकअप कराना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ तरीके नुस्खे हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने मौखिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, कुछ एक व्हाट्सएप मैसेजेस भी हम तक पहुंचे हैं। एक लिख रहे हैं जिला लातेहार झारखंड से कॉलेश्वर ठाकुर, कहते हैं तंबाकू पान मसाला जो लोग सेवन करते हैं उन लोगों को खाना खाते समय सब्जी ज्यादा तीखा लगना या भूख कम लगना या हाथ से 4 उंगली मुंह में नहीं जाना है, तो ऐसा मानते हैं कि ये पान तंबाकू खाने से ही हो रहा है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने सही तरीके के सारे लक्षण जो हैं, मेरा काम जो है आसान कर दिया है सारे।

0: सही लक्षण बताए हैं, जो भी तंबाकू का सेवन करता है उनको करारा या फिर तीखा खाना बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज उनकी जो अंदर की जो मांसपेशियां हैं वो पतली हो जाती हैं, इसलिए मुंह में छाले बार बार पड़ते हैं, इन लोगों को ज्यादातर पड़ते हैं, उसकी वजह से मुंह में जलन, खाना ना खा पाना, तीखा ना खा पाना और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं।
1: एक और मैसेज आया है, सुशील ठाकुर लिख रहे हैं, मेरे टूथ में मेरे दांत में सेंसिटिव है।
0: देखिए सुशील जी, ऐसा है कि कई बार ठंडा गर्म लगने के कई कारण हो सकते हैं, तो पान खाते हैं तो फिर आपको जानना जरूरी ये है कि पान में खुरदरे पदार्थ होते हैं जिसकी वजह से समय से पहले दांत जो है ना घिसना शुरू हो जाते हैं और उसी की वजह से ठंडा गर्म लगता है। सिंपल सी चीज है, जो प्रॉब्लम है उसको अगर हम हटा दें तो ये तकलीफों से हम निजात पा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हटाएंगे तो इसी तरह से दवाइयों का लेते रहेंगे साथ और फिर बाद में करना उसका भुगतान आप ही को करना पड़ेगा। तो इसीलिए
1: आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर 102.6 पर और आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विक्रांत मोहंती जो प्रोफेसर एंड हेड हैं पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री से मौलाना आजाद मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज न्यू दिल्ली से। सवाल और भी लेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, रेडियो डॉक्टर में एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं आपके साथ और एक और लिसनर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो।
2: हेलो
1: जी, आपका नाम बताइए और आपका सवाल पूछिए।
2: नाम मेरा अरुणेश कुमार मिश्रा है मैम।
1: जी,
2: ये बीच बीच में ना मेरे छाले पड़ जाते हैं मसूड़ों में और वो अपने आप फूट जाते हैं, तो डॉक्टर साहब से मतलब क्या कोई टूथपेस्ट वगैरह चेंज करें या फिर कैसे करें?

0: हाँ अरुणेश जी, देखिए अब जो आप कह रहे हैं वो एक बार सही से एक बार जांच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंह में ऐसे छाले आना या फिर सूजन हो जाना, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले कारण जानना ज़रूरी है, बिकॉज़ इलाज जो है उसी कारण के हिसाब से ही उसका इलाज होता है। अगर दांत से जुड़ा हुआ प्रॉब तकलीफ है तो फिर हम दांतों का इलाज करेंगे, अगर मसूड़ों में तकलीफ है तो फिर मसूड़ों का अलग से इलाज होगा। अगर ये सूजन और जो ये बन रहा है ये बार बार तंबाकू के खाने के सेवन की वजह से हो रहा है तो फिर उसका इलाज अलग होगा। तो पहले तो कारण जानना जरूरी है, क्योंकि इलाज जो है कारण के हिसाब से ही हम इलाज करते हैं।
1: जी
0: तो अगर एक ट्रेन्ड सर्टिफाइड दंत चिकित्सक के पास आप जाएंगे तो वो जरूर पहले जांच करेंगे, और जांच के साथ साथ सही कारण क्या है उसका कारण के हिसाब से फिर आगे का इलाज करेंगे।
1: जी बिल्कुल सर। उमेश कुमार जी पूछ रहे हैं ख्याला से, कहते हैं टीथ में मेरे पेन हो यदि तो उसे निकलवाना चाहिए या फिर नहीं, या दवा से भी वो ठीक हो सकता है।
0: उमेश जी देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकता। अगेन वापस मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ मैं रेडियो टॉक शो पे नहीं कहूँगा जो कि मतलब आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जो निकटतम आपके दंत चिकित्सक हैं
1: ने
0: उनके पास
1: दिखाएं।
0: दिखाएं
1: जी
0: पहले,
1: बिल्कुल।
0: बिकॉज मैं यहाँ से ये नहीं कह दूँ कि दांत निकालना है तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। दांत निकालना अगर ज़रूरी है तो निकालना पड़ सकता है,
1: जी
0: वरना नेचुरल टीथ जो है आपके जो शरीर का जो अंग है वो उसको जितने दिन तक आप बचा के रखेंगे वो आपके काम ही आएगा, चाहे उसका इलाज करवा के, नसों का इलाज करवा के हो ताकि दर्द दूर हो जाए, और उसके बाद वो दांत वैसे ही रहेगा, लेकिन वो सारे आपके जो काम जो है जैसे चबाने का हो, मुस्कुराने का हो, और ये सब चीज़ों के लिए वो आपको मदद करेगा।
1: जी तो जितना ज्यादा आप अपने दांतों को या अपने शरीर को आप स्वस्थ रखना चाहें वो आपके ऊपर है। यदि आप दांतों की या मुंह की सफाई सही तरीके से करते हैं तो आप अपने दांतों को भी बचा सकते हैं और किसी भी तरह की प्रॉब्लम से होने से अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं ओरल समस्याओं पर और वो भी तंबाकू खाने की वजह से।
0: जी
1: तो जैसे कि आपने हमें बताया, लक्षण बहुत सारे बताए आपने,
0: जी
1: लेकिन इसके अलावा क्या क्या बीमारियां इससे होती है वो भी हम जानना चाहेंगे।
0: जी ये बहुत ज़रूरी जानना, बिकॉज तंबाकू एक ऐसा पदार्थ है जिसको खाने से आप मान लीजिए कि आपके सर के बाल से लेके आपके पैर के नाखून तक ऐसा कोई अंग नहीं होगा
1: जो
0: जो
1: प्रभावित नहीं
0: प्रभावित
1: होगा।
0: नहीं होगा।
1: जी
0: जब अब अगर हम कैंसर की बात करें, शरीर में 10 से ज़्यादा किस्मों की कैंसर जो हैं शरीर में होती है, चाहे वो मुंह का कैंसर तो हमने बात कर
1: जी
0: ही लिया, चाहे गले का कैंसर आप कहिए, फेफड़ों का कैंसर कहिए, स्टमक कहिए, पैनक्रियास कहिए, आप बस गिनते जाइए, कैंसर की गिनती जो है तंबाकू के सेवन से मतलब ऐसा कोई अंग नहीं जो बच जाएगा, नंबर
1: जी
0: वन। तो कैंसर तो एक बहुत मतलब इमीडिएट मैनिफेस्टेशन जो होता है, उसके अलावा फेफड़ों की बीमारी होना, मस्तिष्क में स्ट्रोक होना, दिल की बीमारियां, बिकॉज सिगरेट पीने से दिल की बीमारियों की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं,
1: जी
0: तो वो होना, फिर किडनी में भी प्रॉब्लम्स होना, तो इस तरह से मतलब शरीर के हर अंग में कहीं ना कहीं तंबाकू का असर पड़ता है, यहां तक कि इम्पोटेंसी भी हो सकती है तंबाकू के सेवन से।
1: जी तो देखिए, आपने तंबाकू, कहते हैं कि तंबाकू बड़ा अच्छा होता है मतलब खाने के लिए, या शुरुआत जब करते हैं तो आपको पता नहीं होता, लेकिन पहले ये शुरुआत होती है, एक आदत बनती है, फिर ज़रूरत बन जाती है और उसके बाद आपको लत लग जाती है और आप इसे छोड़ नहीं पाते। लेकिन डॉक्टर साहब, एक डेंटिस्ट किस तरह से इस आदत से निजात दिला सकता है किसी भी पेशेंट को?
0: जी देखिए, सबसे पहले
1: मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोगों को पता होना चाहिए कि एक डेंटिस्ट भी किस तरह से इसमें मदद कर सकते
0: जी
1: हैं।
0: जी बहुत जरूरी है कि ये जानना कि देखिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन जनरल आपकी मदद कर सकते हैं, और खास करके एक दंत चिकित्सक जो है वो जो है सबसे पहली बात यह है, दंत चिकित्सक जो है छोटे बच्चों से लेके वृद्ध अवस्था तक सभी को, चाहे वो मेल हो या फीमेल्स हो, वो सभी को वो केटर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने दंत चिकित्सक को बचपन से लेके बुढ़ापे तक आप मिलते रहते हैं, तो सबसे पहली बात दंत चिकित्सक अपने आप ट्रेंड होते हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, और खास करके जब वो चेकअप करते हैं, अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं उनको ज़रूर बताएं कि आप तंबाकू का सेवन करते हैं, और उसी की वजह से आप उनके पास आए, नंबर वन। नंबर टू, एक दंत चिकित्सक आपकी पूरी सब कुछ समझने के बाद वो आपको एक हेल्प कर सकता है, काउंसलिंग और एक डॉक्टर दोनों का मिश्रण है दंत चिकित्सक, वो काउंसल भी कर सकते हैं, आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं, और साथ में डेंटल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं।
1: जी
0: तो उससे डेंटिस्ट जो है ना, दंत चिकित्सक जो है, बहुत कुछ आपको मदद कर सकते हैं जब तंबाकू छुड़ाने की बात आई तो।
1: जी डॉक्टर साहब, इसी बात पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हें लेते हैं हम लाइन पर। हेलो
2: हेलो
1: जी, कौन बोल रहे हैं सर आप?
2: नमस्कार मैडम, डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
0: नमस्कार,
2: रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ, सुभाष नगर नई दिल्ली से।
0: जी जी बताइए
1: डॉक्टर
2: साहब, मेरा सवाल ये है कि मेडिकल

0: साइंस को बहुत एडवांस हो गई है, तो
1: जी
0: ऐसे में अगर कोई होम रेमेडीज हैं जिससे हमारी ओरल केयर होती रहे और हमारे जो दांत और दाढ़ है वो भी सेफ रहे, कृपया बताने का कष्ट करें।
1: जी जी जी चड्डा जी, देखिए एडवांसमेंट तो बहुत हुई है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो आज तक हम वही हैं, और उसी के हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि ब्रशिंग करने, जब आप टूथब्रश सेलेक्ट करते हैं, हर उम्र के लिए अलग अलग, मतलब बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग अलग टूथब्रशेज आती हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि अलग किस्म के टूथब्रश खरीदें, और टूथब्रश से ही आप उतना जितना मिनिमम चाहिए

0: टूथब्रश सेलेक्ट करते हैं, हर उम्र के लिए अलग अलग, मतलब बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग अलग टूथब्रशेस आती हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि अलग किस्म के टूथब्रश खरीदें, और टूथब्रश से ही आप उतना जितना मिनिमम चाहिए आप उतना करिए, क्योंकि इतने से ही आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। नंबर वन, दो टाइप के टूथब्रश हैं, और पेस्ट भी बच्चों के लिए अलग किस्म के आते हैं और बड़ों के लिए अलग किस्म के आते हैं। ये भी ध्यान रखिए, पेस्ट बहुत ज़रूरी है, किसी भी वाइट कलर का पेस्ट जो भी होता है, प्रेफरेबली जेल ना हो, लेकिन आप जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पेस्ट का सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है। और तीसरा ये है, जो आप जीभ साफ करते हैं, टंग क्लीनर जिसको हम बोलते हैं, इन तीन चीजों से ही आप एक मिनिमम, मतलब एक बहुत स्वस्थ मौखिक स्वास्थ्य का आनंद उठा सकते हैं। साथ में अगर आप इसमें जोड़ दें रेगुलर डेंटल चेकअप, तो इन चार चीजों से, और आप जो हेल्दी खाना खाते हैं, जो बैलेंस डाइट होता है, या फिर आप कहिए जो पौष्टिक आहार होता है, इन इन चार पांच चीजों को लेके आप अपने मौखिक स्वास्थ्य और पूरे शारीरिक स्वास्थ्य को भी आप बरकरार रख सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, एक मैसेज हम तक और पहुंचा है, ये लिख रहे हैं केडी त्रिपाठी रांची से, इन्होंने अपनी उम्र बताई है 74 वर्ष। कहते हैं दो दांतों के बीच में जगह हो गई है और वहां पर खाना फंसता है, रबर जैसा मटेरियल से इसको भरा गया था लेकिन ये निकल जाता है, क्या करना चाहिए?
0: जी त्रिपाठी जी, ऐसा है, सबसे पहले एक बार फिर देखना पड़ेगा कि कितना जगह बना हुआ है। उम्र के साथ साथ जैसे हमारे पूरे शरीर में चेंजेस आती हैं, तो हमारे दांतों के भी चेंजेस होते हैं जो एज रिलेटेड होते हैं। और कई बार कोशिश ये होती है एज अ डेंटल प्रोफेशनल, हमारी होती है कि उसको जितना ज़्यादा फंक्शनल, या फिर जितना जितना दिन तक हम उसको रख सके, ताकि वो अपना सारा काम, दांत जो है अपना सारा काम निभा सके। लेकिन अगर आप ऐसा लगता है कि जगह बहुत ज़्यादा है और बार बार भरने के बाद भी अगर उसका उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो फिर हमें और कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तो वो प्रेफरेबली यही होगा कि आप लोकल अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, जो ट्रेन्ड और स्पेशलिस्ट हों, और उनसे खास करके ये ये जांच करवाना बहुत जरूरी है कि इसका, इसके अलावा और क्या इलाज हो सकता है।
1: सर डॉक्टर साहब, ऐसा ही एक सवाल सोनू ने भी पूछा है उत्तर प्रदेश से, इनका इनकी उम्र है 35 साल, इन्होंने भी यही कहा कि खाना फंस जाता है लेकिन ब्रश करने के बाद भी नहीं निकलता, तो क्या ये जो गैप है ये अपने आप फिल हो जाते हैं, या इसके लिए मतलब कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं?
0: देखिए सोनू जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हमारे एज पर जो डेटा जो कहता है, जो जो आंकड़े जो कहते हैं, वो कहते हैं ऑलमोस्ट 70-80% लोगों में मसूड़ों की बीमारियां होती हैं। ये जो दांतों में जो गैप आना शुरू होता है ना, ये खास करके मसूड़ों की बीमारियां जो है ना, शुरुआती लक्षण वही होते हैं कि मसूड़ों की बीमारियों से फिर उसकी हड्डी गलना और फिर दो दांतों के बीच में जगह बन जाना, तो उसकी वजह से वहां पर खाना फंसना शुरू हो जाता है। जब एक बार फंसना शुरू होता है, उसके बाद अगर नहीं निकलता, तरीका यह है कि डेंटल दंत चिकित्सक के पास जाएं, उसकी सफाई करवाएं। बट उसके अलावा जैसे आप वापस आते हो और रूटीन में आप रहते हो, तो कई बार फंसता है, तो आप लोग टूथपिक का इस्तेमाल करते हो, तो जरूरी यह है कि इस तरह के जो उपकरण हैं, जैसे टूथपिक रेगुलर, बहुत ज्यादा
1: पिन की भी
0: इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल पेन कुछ भी डालते हैं, तो ध्यान रखना है कि इन सब चीजों को यूज ना करें, इस्तेमाल ना करें, और अपना डेंटल चेकअप कराते रहें। उसके अलावा जरूरी यह है कि रेगुलर ब्रशिंग और मेंटेनेंस की बहुत जरूरी है, ओरल हाइजीन की।
1: जी एक कॉलर लाइन पर है, हेलो।
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, आपका नाम बताइए।
2: सर को भी नमस्कार
0: जी। नमस्कार नमस्कार
2: जी, मैं यामिन भाई रेडियो वाला सिरोड़ी लोनी जिला गाजियाबाद।
1: जी पूछिए आपका सवाल।
2: सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैम कि जैसे कि हम पानी नहीं खाते, तंबाकू इस्तेमाल नहीं करते, गुटखा इस्तेमाल नहीं करते, तब भी हमारे दांत पीछे से लाल क्यों रहते हैं?
0: जी लाल रहते हैं। कुछ और आप कुछ खाने पीने में कुछ और ऐसा कुछ करते हैं?
2: नहीं नहीं कुछ नहीं लेते जी।
0: अच्छा ठीक है, फिर वही मेरा सुझाव यही रहेगा आपको कि आसिन जी आप ना एक आसपास के जो निकटतम डेंटल चिकित्सक हैं उनसे जरूर जांच कराएं। खाने के पदार्थ में भी, हम जो खाना खाते हैं ना उसमें भी रंग होता है, और उसकी वजह से भी हमारे दांतों पे रंग चढ़ सकता है, तो जरूरी यह है कि जानना कि अगर कोई कारणवश अगर है और सालों के बाद, जैसे आप अपना उम्र कह रहे हैं, सालों पे हम जितना साल हम खाना खाते हैं उसके ऊपर इस तरह के भी चेंजेस आते हैं, जैसे मैं कह रहा था समय उम्र के साथ जो चेंजेस पूरे शरीर में आते हैं दांतों में भी आते हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ये एज रिलेटेड या फिर उम्र के साथ चेंजेस हैं, या फिर इसके अलावा कुछ और कारण भी हो सकता है, तो चेकअप के बाद ही पता लगेगा।
1: जी एक मैसेज आया है आलोका का, 52 ईयर्स की है, और कह रहे हैं कि ठंडा गर्म दांतों में लगता है, दांतों के ऊपर कुछ कैविटीज से भी लगती है, इसके लिए प्लीज सजेस्ट करें कि क्या है।
0: आलोका जी, कई बार ऐसा होता है कि ठंडा गर्म लगने के, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ शो पे, कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें एक कारण जो है दांतों में सड़न होना। तो दांतों में सड़न होने की वजह से, जैसे आप कह रहे हैं कैविटी हो गया, कैविटी होने की वजह से वहां खाना फंसना शुरू

0: सकता है और उसकी वजह से भी ठंडा गर्म लगना शुरू होता है। सबसे पहली बात यह है, अगर आपको लगने लग गया है कि खाना फंस रहा है, कैविटी हो गया है, ठंडा गर्म लग रहा है, तो आप जल्द से जल्द जाके उसका इलाज कराइए। क्यों, अगर लेट करेंगे तो ये जो कैविटी है या जो जो जो सड़न की वजह से जो गड्ढा बन गया दांत में वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और उसकी वजह से दांत शायद पूरा टूट भी सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है समय रहते हुए इसका इलाज कराना ज़रूरी है।
1: जी सर, एक मैसेज और आया है हम तक, लिखने वाले हैं चैंप सिंह बरमार से। वो पूछ रहे हैं कि मेरे दांतों में मैंने मसाला भरा हुआ है लेकिन कैप नहीं लगाई है, इससे कुछ परेशानी तो नहीं होगी? लेकिन साथ ही ये भी कहना चाह रहे हैं कि दांत का मतलब दाढ़ है और वो एक दांत दाढ़ सही हो गई है लेकिन दूसरे पास के दांत में दिक्कत हो गई है।
0: ओके ओके, देखिए ऐसा हो सकता है कि जो आप वो कह रहे हैं मसाला भरवाया, सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि उनमें नसों का इलाज हुआ है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें दांतों के नसों का इलाज होता है और सफाई होके सड़न जब फैल जाती है तो उसकी पूरी सफाई होती है और पूरा मसाला भरा जाता है। और जब ऐसे दांतों में जब हम लोग पूरे दांत को बचाते हैं, ये खास करके दांतों को बचाने के लिए किया जाता है कि दांत अपनी जगह पे रहें लेकिन उसमें कोई जान ना रहे, लेकिन वो सारे फंक्शंस वो कर सकें जो एक नॉर्मल दांत को करना है। लेकिन इस दांत में क्योंकि कोई न्यूट्रिशनल सप्लाई नहीं है तो ये दांत जो है इसमें पानी का प्रभाव भी कम, पानी मतलब यू नो वाटर कंटेंट भी कम हो जाता है ओवर द इयर्स और ये थोड़े ब्रिटल हो जाते हैं, मतलब टूटने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसीलिए मसाला भरने के बाद विद इन 1 month to 2 months के अंदर, मैक्सिमम विद इन 2 to 3 years के अंदर आप वो कैप चढ़ाना जरूरी है। अगर क्योंकि कैप नहीं चढ़ाएंगे तो दांत का फ्रैक्चर होना या दांत का क्रैक होना बहुत संभव है। ये यू नो इवन 3 महीने 4 महीने के बाद भी हो सकता है, लेकिन अगर आप सही समय पे कैप नहीं लगाएंगे तो कैप क्या करता है, कैप जो है जितने होने वाले फोर्सेस जो हैं, दो दांत ऊपर और नीचे के दांत जब मिलते हैं उसका जो फोर्स होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है और डिस्ट्रीब्यूशन से वो उस दांत पे उतना असर नहीं पड़ता जितना पड़ सकता है।
1: जी, तो मुझे लगता है हमारे लिसनर्स लगातार अपने क्वेश्चंस का आंसर सुन रहे हैं, अपनी समस्याओं का निदान पा रहे हैं। और ऐसे ही एक लिसनर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। हेलो।
2: हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, आपका नाम बताइए और आपकी समस्या बताइए।
2: मेरी जगजीत सिंह नाम है, मेरे दांत नकली लगे हुए हैं।
1: ओके।
2: हाँ जी, इनसे पूछना है कि रात को लगा के सोएं या कुछ, अब दिक्कत करने लगे, 8 साल हो गए इनको लगे हुए। दांत बिल्कुल ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, साफ सुथरे हैं, मगर खाने में अब दिक्कत होने लगी है, कभी दर्द होने लग जाती है।
0: ओके, तो जगजीत जी आपके क्या पूरे दांत लगे हैं या फिर कुछ ही दांत?
2: दोनों, बिल्कुल दोनों दांत लगे हैं, 8 साल हो गए, बिल्कुल साफ है दांत, बिल्कुल चमकदार, फर्स्ट क्लास, कोई नुक्स नहीं दांतों में।
0: अच्छा।
2: मगर लगाने में ना डॉक्टर साहब कभी महीने के बाद साइड के जो अकेली दांत होते हैं ना इनमें दबाने में बड़ा दर्द होने लग जाता है, कोई हड्डी तो आ जाती है, पता नहीं क्या होता है उसके नीचे,
0: ठीक है। जगजीत जी, इसके इलाज हैं, इसका आप एक बार ना सबसे पहले जिनसे आपने बनवाया है उनके पास आप दोबारा जाएं और उनको दिखाएं, डेंचर के नीचे भी कई बार कुछ चेंजेस, आप मसूड़ों के ऊपर भी जिसके ऊपर आपका डेंचर रहता है, जो नकली दांत रहता है ना, वो वहां पर भी छाला भी पड़ सकता है। तो एक बार उनको चेकअप करने दीजिए, एक बार देखने दीजिए वहां पर कोई हड्डी का टुकड़ा तो नहीं है। अगर वो पूरी तरह से जांच कर लेंगे और अगर उनको लगता है कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो फिर वो जो नकली दांत है उसमें भी अंदर से रीलाइनिंग जिसको कहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज जो मैं कह रहा हूँ ये जांच के बाद ही डिसाइड होगा कि क्या तकलीफ, कारण क्या है, उसके हिसाब से आपका इलाज किया जाएगा।
1: जी, तो हमारे सभी लिसनर्स लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए भी और फोन कॉल्स के जरिए भी। आज की हमारा जो विषय है वो है ओरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू टोबैको यूज। यदि आपका भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर विक्रांत मोहंती, प्रोफेसर एंड हेड पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। तो अब वक्त हो गया है एक डॉक्टर साहब की पसंद के गीत को सुनने का।

0: रेडियो डॉक्टर में एक बार फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं ओरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू टोबैको यूज। डॉक्टर साहब, 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं सबसे पहले ना वर्ल्ड हेल्थ जो विश्व स्वास्थ्य परिषद है, WHO जो है, वो पिछले 1987 से एक मुहिम के उद्देश्य से एक थीम निकालते हैं
0: जी।
1: और इस थीम पे पूरे साल भर काम किया जाता है। जितने भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, जितने भी संस्थाएं तंबाकू नियंत्रण के लिए काम करती हैं, उनके लिए एक उनको एक विषय मिलता है जिसपे वो लोग मिलके एकजुट होके इस तरह से काम करते हैं। खास करके देखिए, आज हमारे देश में करीब 3,500 से 4,000 लोग हर दिन तंबाकू के सेवन के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रकोप से उनका निधन हो रहा है, डेथ हो रहा है
0: जी।
1: और जब इतने लोग मर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये टोबैको के यूजर्स हैं जो ये मर रहे हैं, और इंडस्ट्री को क्या चाहिए कि उनको नए उनको कस्टमर्स मिलने चाहिए, उनको और सेवन करने वाले लोगों को मिलने चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि कैच देम यंग, तो प्रिंसिपल है कैच देम, जो बच्चे उनको एक्सपोज करते हैं, आए दिन सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, सैंपल्स, फ्री सैंपल्स बांटते हैं, स्पॉन्सरशिप्स देते हैं, स्टेशनरी बिकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को रुझाने के लिए किया जाता है। और बच्चे जो हैं पीयर प्रेशर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और खास करके पीयर प्रेशर एक और चीज है, और साथ में रोल मॉडल्स हैं जिनको वो लोग काफी स्क्रीन्स पे देखते हैं, जिनसे काफी इन्फ्लुएंस होते हैं, और वो सारे तरीके से एक एनवायरनमेंट है। और खास अपने ही आसपास लोगों को देखते हैं कि वो लोग सिगरेट, बीड़ी, खैनी खा रहे हैं, उससे उनको इन्फ्लुएंस होता है। तो ये इंडस्ट्री जो है खास करके किसी एक रूप में नहीं है, कई रूपों में बच्चों के इर्द गिर्द है जो हमें पता भी नहीं लगता कब इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसलिए जरूरी यह है कि हम बच्चों को बचाए रखें और उनको समझाएं कि इस तरह की आदतों से आज नहीं पूरे जिंदगी भर दूर रहना है।
0: बिल्कुल रहना है, और लेकिन इस वक्त हम एक कॉल से दूर नहीं रह पा रहे। कॉल बहुत देर से हमारे लिसनर वेट कर रहे हैं। तो हेलो,
2: नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
2: मैं जितेंद्र दोसार से ग्राम तहसील खैर जिला हरिगढ़ यूपी वेस्ट से
0: आपका सवाल पूछिए।
2: तीन सवाल है। पहला सवाल तो मेरा ये है, जैसे तंबाकू का सेवन करते हैं
1: जी,
2: आपने देखे होंगे कैंसर का रिजल्ट आते हैं
1: जी,
2: चांस अधिकतर बढ़ जाते हैं
1: जी,
2: इस पे क्या कहना चाहेंगे
1: जी?
2: अब यूं तो बोलते हैं कि तंबाकू एल्कोहल यूज नहीं करें, इन पे पाबंदी लगा दी जाए तो फिर यूज कहाँ से करेंगे
1: जी? बहुत बहुत नेक सोच है आपका और बहुत जरूरी सवाल भी है कि देखिए, कैंसर तो होना जो है ना संभव, तो जो तंबाकू का सेवन करते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, इन सब में ऑटोमेटिकली कैंसर होने की संभावना या बाकी शारीरिक बीमारियों को होने की संभावना हम कई गुना बढ़ा देते हैं।

0: ठीक है, नंबर वन. नंबर टू ये है कि अगर हम कैंसर होने वाला है तो इसको पाबंदी क्यों नहीं करते, क्योंकि ये क्योंकि ऐसा सवाल है जिसका शायद हम एक डायरेक्ट एक सोल्यूशन नहीं है, क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इसको जितना ज़्यादा हम रोकेंगे उतना बेहतर होगा सभी के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए भी.
1: जी बिल्कुल. और ऐसा ही डॉक्टर साहब एक और सवाल हम तक पहुंचा है, कहते हैं खाना खाते समय गाल का अंदरूनी भाग कभी कभी कट जाता है, क्या ये दांत या दाढ़ की वजह से होता है? और साथ साथ रात को गर्म या ठंडा पानी कौन सा पीना चाहिए कि दांत हमारे स्वस्थ रहें? लिख रहे हैं मनोहर लाल गांधी चाणक्य चौक गाजियाबाद से.
0: जी मनोहर जी थैंक यू, ये धन्यवाद आपके सवाल का. सबसे पहली बात, गाल के अंदर अगर बार बार दांतों के बीच में अगर गाल आ रहा है तो कई बार ऐसे दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं और उनकी बनावट ऐसी होती है कि वो बहुत नुकीले भी होते हैं, तो इन नुकीले दांतों की वजह से गाल पे इस तरह से कट या फिर छाला पड़ होने की संभावना या चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है. सबसे पहले इसकी जांच कराएं. कई बार दंत चिकित्सक क्या करते हैं कि उन जो दांत बहुत नुकीले हो गए हैं उनको थोड़ा सा उसकी इलाज करके उसको कम नुकीले बना देते हैं, उससे जो है असर पड़ना इस तरह का होने की संभावना कम हो जाती है. और दूसरा सवाल क्या था आपने पूछा था उनका?
1: उन्होंने यही पूछा था कि
0: मतलब पानी किस तरह का पानी रात को किस तरह से पीना चाहिए. जी ऐसा देखिए, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में ना करें तो बेहतर होगा. गुनगुना पानी लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सट्रीम ठंडा पानी या एक्सट्रीम गर्म पानी ना लें, और नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है जो आम तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर पे जो पानी है उसका सेवन जरूर करें.
1: जी डॉक्टर साहब, आजकल हुक्का पीना या ई सिगरेट या खासतौर पर यूथ में ये वेपिंग बहुत ही आम हो गया है, या अभी आम भी नहीं हुआ है, लोग समझ भी रहे हैं लेकिन उसके बावजूद बच्चों में बहुत पॉपुलर है.
0: जी.
1: तो क्या आपको लगता है कि लोगों के बारे मन में ये मिथ है या ये एक्चुअल में है कि इसमें तंबाकू नहीं होता?
0: जी देखिए, ये सब इंडस्ट्री के टैक्टिक्स हैं. मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहूंगा इस पे कि जो वेपिंग जो आपने कहा, ये बेसिकली ई सिगरेट, इसको हम एंड्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम्स. तो ये जो निकोटीन डिलीवरी, निकोटीन क्यों? क्योंकि निकोटीन जो है ना, जो तंबाकू आज हम लोग जो खाते हैं, जो लोग खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या फिर गुटखा खैनी खाते हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पदार्थ होता है, वैसे तो उसमें से 400 से अधिक ऐसे हानिकारक पदार्थ हैं, बट सबसे ज्यादा एडिक्टिव जो सब्सटेंस इन सब में है टोबैको में है वो है निकोटीन. वो इतना एडिक्टिव है कि वो आपका शरीर जो है, जो ब्रेन जो है वो उस पे डिपेंडेंट हो जाता है, और पूरा जब तक वो नहीं होता तब तक उसकी सर्किट कंप्लीट नहीं होती. तो सबसे पहली बात इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री ने निकोटीन के नए नए तरीके डिलीवर करने के तरीके बनाए, जिसमें से वेपिंग एक चीज है.
1: तो आज की डेट में, आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी है कि जो यूथ है हमारा वो इस बात को समझे कि चाहे वो हुक्का पीना हो या फिर ई सिगरेट हो और या फिर वेप हो, ये कहीं से भी अच्छी चीज नहीं है और आपको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए.
0: जी बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई सिगरेट्स, वेपिंग, हुक्का, इन सब जो ई हुक्का है, इन सबको बैन कर रखा है 2019 से. और अगर हम ये मिल रहे हैं तो ये इलीगल तरीके से मिल रहे हैं, अदरवाइज दीज हैव बीन बैन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अक्रॉस द होल कंट्री.
1: और मुझे लगता है समय जो यूथ हमें सुन रहा है ना, वो बहुत ही इंस्पायर होगा हमारे डॉक्टर साहब के इस बात से, और साथ में उस गाने से जो अगला हम आपको सुनाने वाले हैं हमारे डॉक्टर साहब की पसंद का.

0: से एक लिसनर हमें याद कर रहे हैं, उनकी कॉल लग गई है, तो जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो।
1: हाँ नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी।
1: हाँ डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
1: सर मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा। उम्र मेरी 48 वर्ष है
2: जी।
1: और सवाल मेरा ये है सर कि मैंने अपनी लाइफ में गुटखे का सेवन किया हुआ है।
2: अब
1: जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने एडवाइस मुझे यो किया कि अगर आप गुटखा खाते हो तो एक तो ये माउथ फ्रेश औषधि होती है मेडिसिन, जिससे मुंह से बदबू कभी नहीं आएगी, दांतों में कीड़े कभी नहीं लगे, इससे तेजाब होता है, तो कभी मुझे इससे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। और साथ में माइंड फ्रेश औषधि भी होती है, अगर मैं इसको खाता था तो दिमाग से मेरे सिर दर्द जो होता है वो भी मतलब कुछ गायब हो जाया करता था, और अगर मैं कोई चीज पढ़ता था सुनता था तो एक ही बार में उसको कंठस्थ कर लेता था। पर फिर कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए, मेरे को ये छोड़ना पड़ा, मैंने छोड़ दिए। तो जब इस वे होते हैं और नेगेटिव है तो फिर इसको या तो फिर मार्केट में अगर हम खाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, और अगर हर्ज है तो फिर थोड़ा सा इससे प्रकाश डाले। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो हम ये
0: जी राजेंद्र जी, बिल्कुल आपके दोनों ही सवाल बिल्कुल जायज हैं और डॉक्टर साहब आंसर दे रहे हैं।
2: जी थैंक यू सो मच राजेंद्र जी। देखिए सबसे पहली चीज ये है, गुटखा जो है इंस्टेंट जो आपको लगता है, जो आपको लग रहा था, ये सब चीजें लग सकती हैं शुरुआती में, लेकिन जैसे जैसे हमारा शरीर इसका आदी हो जाता है तो इसको उसके अलावा और कुछ सूझता नहीं है। तो सबसे पहले ही जानना जरूरी है, देखिए गुटखे का सेवन आप जरूर करते हैं लेकिन आप उसका असर किस किस चीजों पर डाल रहे हैं। आप उसको थूकते होंगे तो उसकी वजह से थूकने से एक तो गंदगी भी होती है और दूसरा जो है यहां तक इन्फेक्शन भी फैल सकता है। उसके अलावा आप जो बोल रहे हैं कि इससे आपको बहुत सारी पॉजिटिविटीज थी, लेकिन वो पॉजिटिविटी थोड़े दिनों की मेहमान है, इसके आगे नेगेटिव हो सकता है। दूसरी चीज आपने पूछा माउथ वॉश के बारे में, तो माउथ वॉश के बारे में बता दूं कि माउथ वॉश रूटीन यूज में हमें डाइल्यूशन मतलब पानी मिला के ही करना चाहिए। बहुत लंबे समय तक माउथ वॉश का इस्तेमाल ना करें, डेंटिस्ट के परामर्श के हिसाब से ही माउथ वॉश इस्तेमाल करें, वो आपसे बेहतर होगा और वो उनकी सुपरविजन में रहेगा तो आपका इलाज और उसका जो असर पड़ता है वो भी बेहतर होगा।
0: बिल्कुल। तो आज हमारे साथ हमारे बहुत सारे लिसनर्स जुड़े हैं जिन्होंने हमें कॉल्स भी की, व्हाट्सएप भी की, लेकिन डॉक्टर साहब एक वक्त बहुत थोड़ा बचा है हमारे पास, लेकिन एक सवाल कुल बुलाकर मेरे सामने आ रहा है। वो पूछ रहा है कि यदि तंबाकू हम छोड़ देते हैं तो छोड़ने के बाद भी क्या कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं या कुछ एक सिम्टम्स होते हैं जो प्रॉब्लम होती हैं?
2: जी जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, बिकॉज तंबाकू का सेवन जैसे हम समय लेके चढ़ता है शरीर में उसी तरह से निकलते वक्त भी वो अपना असर इतना आसानी से छोड़ता नहीं है। तो इसको हम लोग एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कहते हैं, जिसको हम लोग विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। जब तंबाकू का सेवन जब आदमी कोई भी आदमी अगर छोड़ता है तो सबसे पहले मिनिमम एटलीस्ट 2-3 वीक्स तक उसके अंदर कुछ विड्रॉल सिम्टम्स दिखती हैं। सबसे पहले जैसे क्रेविंग होती है, क्रेविंग का मतलब ये होता है उसके अंदर अर्ज, मतलब उसके अंदर इच्छा होती है कि अब जब छोड़ दिया है, हाँ जरूरत है अभी इमीडिएटली मैं कुछ उठा के या तो बीड़ी पी लूं, सिगरेट पी लूं या गुटखा खा लूं, तो उसको वो अर्ज होती है। तो वो अर्ज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसको दवाइयों से हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। तो काफी सारी दवाइयां हैं जो डेंटल प्रोफेशनल भी दे सकते हैं, अदरवाइज मेडिकल प्रोफेशनल भी दे सकते हैं इन इस क्रेविंग को एड्रेस करने के। इसके अलावा बेचैनी होना, शॉर्ट टेम्पर, गुस्सा आना ना, प्यास लगना बहुत ज्यादा, या फिर गले में कुछ फंसा हुआ लगना, तो इस तरह की जो जितने भी विड्रॉल सिम्टम्स हैं ये सब 3-4 हफ्ते रहती हैं। इसके लिए आपको कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज जैसे काउंसलिंग आप ले ही रहे हैं, फैमिली सपोर्ट, क्योंकि अगर आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छी आदत है ये, तो आपके फैमिली के और दोस्तों के सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा दवाइयों का सपोर्ट, और खास करके खुद समझें, आप जब तक इसको अपने आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं करेंगे और ऐसे चीजों का जैसे आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जैसे हम आराम की बात करते हैं, पौष्टिक आहार की बात करते हैं, अच्छे नींद मतलब स्लीप प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, सही से सोना, 7-8 घंटे सोना और एक्सरसाइज करना, और बहुत जरूरी एक्सरसाइज करना, इन सब 4-5 चीजों की तरफ अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो शरीर तो तंबाकू के सेवन से खराब होना ही है। तो आप ये लेकिन ये लेके चलिए कि एक डेंटल प्रोफेशनल, एक दंत चिकित्सक जो है आपकी मदद कर सकता है। आप उनसे अपने प्रॉब्लम जो तकलीफ है उसको शेयर

0: ये और वो सही तरीके से आपको गाइड करेंगे इस चीज से निजात पाने के लिए।
1: जी, तो आज का हमारा जो विषय था वो था ओरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू टोबैको यूज, और हमारे बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर विक्रांत मोहंती, प्रोफेसर एंड हेड मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज से हमारे साथ जुड़े और उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। तो आज डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका भी।
1: जी थैंक यू सो मच, और इसी के साथ रश्मि लेती है आपसे इजाजत रेडियो डॉक्टर से। यदि आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे ईमेल आईडी के जरिए। हमारी ईमेल आईडी है healthairdelhi यानी कि healthairdelhi@gmail.com पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, और किस विषय पर आप रेडियो डॉक्टर सुनना चाहते हैं आप वो विषय भी हमें लिखकर भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू, धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
8: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
9: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ

0: ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली तेरी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युववाणी ते सेगमेंट चल रहा है तुहाडा अपना गौंदा पंजाब, जिस तों इंजॉय कर रहे हो तुसी फुल ऑन। ते इस दे नाल ही साडे अगले जिहड़े लिसनर ने ना उस साडे नाल जुड़ चुके ने, ते आओ उहनां दे नाल करदे हां गलबात। हैलो
1: हेलो मैम, गुड इवनिंग जी।
0: जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा युववाणी प्रोग्राम दे विच। कौन गल कर रहे हैं
1: हाँ जी मैम, हाँ जी, थैंक यू सो मच जी।
0: जी, कौन गल कर रहे हैं?
1: मैडम, मैं मास्टर डेनियल मट्टू, पिंड मॉडल टाउन, नियर नडाला, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। ते की फरमाइश लैके आए हो तुसी अज?
1: मैम, फिल्म एक आई सी 1989 विच,
0: जी,
1: श्री लेट वरिंदर जी दी प्रीति सपरू नाल, उहदा गीत है गुड़ नालों इश्क मिठा।
0: क्या बात है। ते अज ना गलबात हो रही सी वर्ल्ड नो टोबैको डे बारे, ते मैं जरूर जानना चाहवांगी कि तुसी की सोचते हो इस बारे।
1: मैम, बड़ा वधिया है सब्जेक्ट गल कर रहे हैं आपां।
0: जी
1: अज भी संडे सी, संडे विच चर्च सर्विसेस हुंदी है, उत्थे भी असीं यही गल सुनी सी कि
0: जी
1: साडे सामणे लिखिया हुंदा है कि शराब पीनी, सिगरेट नोशी करनी, तंबाकू खाना इंजूरियस टू
0: जी
1: हेल्थ यार,
0: बिल्कुल
1: सेहत लई हानिकारक है। उत्ते पिक्चर भी बनी।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: मेरा एक जिद्दी गुआंढी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगा लेने, पर ओ मन्नू तैयार ही नहीं सी कि सचमुच बिल जीरो आ सकता है। मैं क्या पुत्र, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सब दा बिजली बिल जीरो आन लगा, फिर बोलिया हुण लगा ही दिना हां। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: एक कहानी है एक हाउसवाइफ ते ओदी अंतरात्मा दी। बिजली दा बिल, करियाना, स्कूल दी फीस, सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। ता नवी साड़ी ले लवा? ना, पिछले महीने ही ता लई सी। एक होर, नहीं, पहला बजट बनाओ, फिर छोटियां छोटियां बचतां नू बैंक च बचा के रखो, ते पैसियां नू वध दे वेखो। वड्डी आई हुण जा भैणे।
3: आरबीआई कहिंदा है
2: वित्ती समझदारी खुशहाल नारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी अमन देव तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों मौजूदा भयानक गर्मी के मौसम दौरान बेहद सावधानी वरतण अते सरकारी दिशा निर्देशों की पालना करन की अपील की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अज चोटी दीयां पोजीशनां हासिल करन वाले विद्यार्थियों नाल मुलाकात की। उन्होंने राज की सिक्ख्या प्रणाली में हो रहे महत्वपूर्ण सुधारों से खुशी प्रगट की है। केंद्रीय रेल राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अनुसूचित जातियां बारे अपने हालिया विवादित बयान ते अफसोस प्रगट करदिया माफी मंगी है। पंजाब ने देश भर चों तंबाकू सेवन दे सब तो घट मामलों नाल जनतक सेहत विच एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। ते आईपीएल क्रिकेट के फाइनल विच अज अहमदाबाद विच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मौजूदा भयानक गर्मी दौरान बेहद सावधानी वरतण अते सरकारी दिशा निर्देशों की पालना करने की अपील की है। आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम विच उन्होंने लोगों नूं घर तों बाहर निकलण तों पहलां वध तों वध पानी पीण अते सूरज तों बचा लई सुरक्षा उपा अपनाउण दी सलाह दित्ती।
5: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश की अनमोल विरासत को सुरक्षित रखने लिए काम कर रही है। उन्होंने यह खुलासा भी किया कि ज्ञान भारत मुहिम के हिस्से वजो छत्तीसगढ़ के मल्हार विच पांडू राजवंश के महारिषि बलार्जुन नाल संबंधित 6वीं-7वीं सदी दीयां 3 दुर्लभ तांबे दीयां प्लेटां मिलियां ने। प्रधानमंत्री ने झारखंड की राजधानी रांची विच आयोजित राष्ट्रीय सीनियर एथलैटिक्स फैडरेशन चैंपियनशिप बारे गल कीती। इस चैंपियनशिप विच लगभग 800 अथलीटां ने हिस्सा लिया। श्री मोदी ने गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विंद शंकर, देव मीना ते कुलदीप कुमार नूं राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़न लई वधाई दित्ती। उन्होंने गुरिंदर वीर सिंह ते अनिमेश कुजूर नाल गल भी कीती।
6: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़

0: बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
3: मोदी ने देशवासियों को अपील की कि वह अपने आले दुआले के समाज की बेहतरी लिए लगातार काम कर रहे लोगों की शलाघा करन ते आप भी चंगे कामों में शामिल होन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज 8वीं 10वीं ते 12वीं जमात समेत पंजाब भर के चोटी दी पोजिशन हासिल करने वाले विद्यार्थियों नाल मुलाकात की। इन्हां विद्यार्थियों ने आपो अपने जिलों ते पूरे राज विच चोटी दी पोजिशन हासिल कीतियां ने। मुख्यमंत्री ने इस मौके बोलदियां पंजाब दी सिक्ख्या प्रणाली विच हो रहे महत्वपूर्ण सुधारों ते खुशी प्रगट की। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी मुकाबले वाली सख्त ते चुनौतीपूर्ण प्रीख्यावां सफलतापूर्वक पास कर रहे हैं।
4: सारे पंजाब दे 8वीं 10वीं ते 12वीं दे टॉपर बच्चे सी, उन्हां नूं मिलन दा मौका मिलिया जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट दे विच ते पंजाब दे विच टॉप कीता। ते साडी जिहड़ी एजुकेशन प्रणाली पंजाब दे विच जो बहुत वड्डे सुधार वल जा रही है, ते अचीवमेंट्स जिहड़ियां कीतियां ने, केरला नूं पछाड़ के पंजाब पहले नंबर ते आया। नीति आयोग दा इह डाटा जिहड़ा पिछले दिन जारी होया, बहुत खुशी है कि साडे सरकारी स्कूलों दे बच्चे जिहड़े ने उह बहुत वड्डे वड्डे औखे औखे टफ एग्जाम जिहड़े ने उह क्लीयर कर रहे ने। तो मैं सारे पेरेंट्स नूं, सारे टीचर्स नूं, सारे उन्हां दे मैं
3: केंद्रीय रेल राज मंत्री रमनीत सिंह बिट्टू ने अनुसूचित जातां बारे अपने हालिया विवादित बयान नूं लैके सफाई दित्ती है ते सर्वजनक तौर ते माफी मंगी है। अमृतसर हवाई अड्डे ते मीडिया नाल गलबात करदा श्री बिट्टू ने कहा कि उन्होंने मुंह चो निकले कुछ शब्दों कारण जे किसी भाईचारे के लोगों को ठेस पहुंची है तो वह दिलों अफसोस प्रगट करते हैं ते अजिही सावधानी वरतणगे कि भविख विच अजिही गलती दुबारा ना होए।
5: गल सिर्फ इन्नी हुई जदों एड्डी बड़ी बहस चल रही सी ते उस वेले जिहड़े लफ्ज़ निकले पर वो लफ्ज़ ने जिहड़े ओ बिल्कुल मैनूं नहीं कहने चाहीदे सी। मैं उन्हां तों भी माफ़ी मंगदा कि कोई भी मन च ऐसी गल कदे आउणी नहीं चाहीदी ते मैं ये भी कोशिश करूँगा अगली बार भी एक कदे भी इहो जिही गल होवे ना।
3: उन्होंने कहा कि जे कोई कमीशन या संबंधित अथॉरिटी उन्होंने तलब करती है तो वह आप हाजिर होकर अपना पक्ष रखेंगे ते लोड़ पैण ते लिखती रूप में माफ़ी भी मंगेंगे। मंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी भी एससी ओबीसी हिंदू सिख या किसी होर वर्ग को नीवा दिखाने की कोई इरादा नहीं सी। पंजाब की कानून व्यवस्था बारे गल करदे रणजीत सिंह बिट्टू ने कहा कि राज विच गैंगस्टरवाद ते अपराधिक गतिविधियां चिंता का कारण ने। पंजाब राज अनुसूचित जाति कमिशन के चेयरमैन जसवीर सिंह गड़ी ने अज फिलौर इलाके के वक् वक् पिंड का दौरा किया। उन्होंने पिंड के समूह भाईचारे के लोगों दशकों से मंगा सुनिया तो मौके से संबंधित अधिकारियों जल्दी तो जल्दी ढुकव हल कर निर्देश दिए। श्री गड़ी ने कहा कि यह दौरा समुचे भाईचारे के हित में किया गया ता जो प्रशासन तालमेल करके उन्होंने समस्यावान का योग हल किया जा सके। तंबाकू के खतरों विरुद्ध जागरूकता पैदा करने लिए आज विश्व तंबाकू रहित दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन विश्व सेहत संगठन वालों तंबाकू की वरतों खत्म करने लिए एक विश्वव्यापी पहल है। इस दौरान भारत सरकार के सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय वालों करवाए गए कौमी परिवारक सेहत सर्वेखण 2023-24 अनुसार पंजाब ने देश भर चों तंबाकू सेवन के सब तो घट मामलों नाल जनतक सेहत विच एक महत्वपूर्ण सफलता दर्ज की है। पंजाब दे सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने दस्सिया कि देशव्यापी व्यापक सर्वेखण पंजाब नूं सारे राज्यां विचों स्पष्ट तौर ते सिखरले स्थान ते स्थापित करदिआं विश्वव्यापी तंबाकू विरोधी मुहिम लई एक असरदार खाका पेश करदा है। दसणयोग है कि सूबे विच 15 साल अते इस तों वध उमर दे पुरशां विच तंबाकू दी वरतों हुण तक दी सब तों घट सिर्फ 13.9% दर्ज कीती गई है, जो राष्ट्रीय औसत 36.3% दे अधे तों वी घट है। औरतों के मामले में स्थिति होर भी बेहतर है। पंजाब 15 साल है तो इस तो वध उम्र औरतों में तंबाकू की वरतों सिर्फ 0.5% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 8.4% नालों काफ़ी घट है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अज कपूरथला का दौरा किया। अपने दौरे दौरान उन्होंने शेखपुर के माता भद्रकाली मंदिर में मत्था टेकया तो सूबे की खुशहाली लिए पूजा की। इस तो बाद उन्होंने सीनियर बीजेपी नेता पुरशोत्तम पासी के निवास स्थान पर एक प्रैस कानफ्रेंस में संबोधन किया। ਆਈ ਪੀ ਐਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਸ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ

लव यू जिंदगी जी, बिल्कुल जी प्रोग्राम चल रहा है जी लव यू जिंदगी। और एक होर मतलब एक वधिया जी स्टोरी लेके आ गए हैं, एक माउंट एवरेस्ट चढ़न वाली दी जी। बिल्कुल जी फीमेल परसन की आप गल कर जा रहे हैं, जेडे कि दर्जी सी पहला पर बाद च उन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम हासिल किया जी। बिल्कुल कोई भी काम जड़ा छोटा नहीं होंगे, कोई भी असं काम कर रहे हैं पर जे असी चाहते हैं कि असी ये चीज़ करनी चाहते हैं तो असी बड़े आराम नाल उसनू कर सकते हैं जे साडे विच जज्बा है वह कम करन दा। ते उही इहदी उदाहरण है जी। अरुणाचल प्रदेश की अंशु जाम सेनपा जी, दो बच्चों की माँ पेशे तो वह दर्जी, पति की छोटी नौकरी, घर चलाना बहुत औखा सी। एक दिन टीवी ते उन्होंने देखा परवा तुर हुई नू पहाड़ चढ़ते हुए, दिल किया कि मैं भी पहाड़ चढ़ के देखा। हर एक का मन करता ही है जी। सो पैसे नहीं सी पर लोगों के कपड़े सियोके पैसे जोड़े। 35 साल की उम्र में उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की पहाड़ चढ़न की, तो पहली बार 2011 एवरेस्ट चढ़े। फिर 2017 उसने 5 दिन दो बार एवरेस्ट फतेह करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो दुनिया की वह पहली औरत बने जिन्होंने 5 दिन दो बार एवरेस्ट नू फतेह किया। जी बिल्कुल छोटी जी गल नहीं है, एवरेस्ट चढ़ना बहुत वड्डी गल है जी। और 5 दिन दो बार चढ़ना ये नामुमकिन जहा लगता है पर इन्होंने करके दिखाया। अज वो नैशनल एडवेंचर अवॉर्डी ने ते अपने कस्बे विच लड़कियां लई मुफ्त ट्रैकिंग कैंप लाउंदे ने, ते कहंदे ने कि लोग कहंदे सी कि सुई धागा तेरा काम है, पर उन्होंने दिखा दिता कि सुई धागे वाले हत्थां नाल रस्सी फड़ के एवरेस्ट भी चढ़िया जा सकता है। जी बिल्कुल तुहाडा पेशा तुहाडी पहचान नहीं, तुहाडा हौसला तुहाडी पहचान बनती है। तो अज यानी कि 31 मई यानी कि 9 तंबाकू डे है, इस दे उत्ते भी एक छोटा जिहा मैसेज देना चाह रहे हैं कि जिवें एक उदाहरण देने जा रहे हैं एक ऐसे बॉडी बिल्डर की जिहड़ा कि पहले बहुत सारे अलग अलग तरह के नशे करता सी। तो उसने एक दिन उसनू पता नहीं की होया लेकिन उसके मन में आया कि यह चीज़ गलत है जी। बिल्कुल लोगों ने उन्होंने बहुत बारी ताने मारे कि तू जो कर रहा सही नहीं है, तेरा शरीर किहो जिहा बनी जा रहा है, तेरी शकल किहोजी है, तू चंगा नहीं लगता, तेरे चो इदा है, तेरे चो वो है, तेरे चो वो है। पहला उसको कोई असर नहीं होया लेकिन बाद चो उसको समझ आई कि ये जो भी मैं कर रहा वो सही नहीं है। उस तो बाद वह नशे छुड़ाओ केंद्र विच रहा, हौली हौली उसने नशा छड्डिया। फिर उसने बॉडी बिल्डिंग यानी कि फिटनेस दी लाइन नू चुनिया, तो अपने शरीर नू अजिहा बना लिया कि अज कल दा यूथ जिहड़ा आ ओह जे ओह जी बॉडी बनाने लई तरस रहा है। तो दोस्तों अज दे दिन यानी कि 9 तंबाकू डे दे उत्ते तुसीं भी एक जिहड़ा आ फैसला लो, यानी कि एक कसम खा लो कि हाँ जी जिहड़ा नशा है वह गलत चीज़ है, इस नू असीं कदी भी नहीं करना। जिहड़े करदे ने ओह भी ना करन ते जिंदगी विच कदी भी ना उस नू वरतन। तो दोस्तों समा हो चुका है जी अगले गीत का, आओ सुनते हैं प्यारा जहा गीत। मिलते हैं इस गीत तो बाद, जाना कितनी है सुनते रहना FM रेमो जलंधर, दिल तो दिल तक।

बात सी पर तू ना समझ सकी, ए साहां दी मुलाकात सी पर तू ना समझ सकी, कुछ अणछुए जज्बात सी पर तू ना समझ सकी, साडी कल्यां दी औलाद सी पर तू ना समझ सकी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी ते अपने मन की बात प्रोग्राम विच राष्ट्र नू संबोधन कर दिया। देशवासियां नू गंभीर गर्मी दे मौसम दौरान बेहद सावधानी वर्तन ते सरकारी दिशा निर्देशां दी पालना करन दी अपील कीती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय समुद्री फौज ने ऑपरेशन सिंदूर दौरान पूरी पाकिस्तानी समुद्री फौज नू अपनी बंदरगाहां तक सीमित रहने लई मजबूर किया सी। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने आज देश दे नवे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अते एडमिरल किशन एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने समुद्री फौज दे अगले मुखी वजो अपना ओहदा संभाल लिया है। केंद्र सरकार ने कल तो शुरू हो रहे पंदरवाड़े लई पेट्रोल डीजल अते हवाई ईंधन ते बरामदी महसूल विच सोध कीती है। दक्षिणी दिल्ली दे साकेत मेट्रो स्टेशन नेड़े कल शाम एक चार मंजिला व्यापारक इमारत ढह जान करके पांच लोकां दी मौत हो गई है। पंजाब राज अते चंडीगढ़ मनुखी अधिकार कमीशन वालों पंजाब दे सारे डिप्टी कमिश्नर दफ्तरां दे जिला पदरी कॉम्पलैक्स विच पंजाब राज मनुखी अधिकार कमीशन दी कोर कमेटी दे जिला दफ्तर खोले जाणगे। महाराजा रंजीत सिंह आर्म फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट MSA SAS नगर दे पांच साबका कैडिट पुणे दे खड़क वासला स्थित वकारी कौमी रखिया अकैडमी तो ग्रेजुएट हुए ने। मौसम विभाग ने 4 मई तक पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दे वक-वक हिस्सों विच गर्ज चमक नाल तेज हवावां चलन संबंधी येलो अलर्ट जारी कीता है। IPL क्रिकेट दे फाइनल्स विच आज अहमदाबाद विच शामी 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दा मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होवेगा। इस सन हुण तक दी FM न्यूज़ हेडलाइन। इस तो बाद तुसी प्रोग्राम एंजॉय करोगे फिल्मी दुनिया।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

जी हाँ दोस्तों, तुसी प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो फिल्मी दुनिया ते असी गल कर रहे हैं अनिल बिश्वास जी बारे। फिर वह कोलकाता दियां गलियां तो निकल के वापस आ रही सी ते उत्थे जाके उन्होंने की किया, कोलकाता तो अगे जाके उत्थे उन्हां दी मुलाकात महान कवि काजी नजरुल इस्लाम नाल होई। अनिल दा जिहड़े सी उन्हां दी प्रतिभा देख के ही हर कोई हैरान हो जांदा सी। वह गाउंदे भी सन, तबला भी वजाउंदे सन ते म्यूजिक भी बनाउंदे सन। उत्थे एक दिन एक शख्स आया ते उसका काम देखिया, उन्हों का काम देखिया ते पुछया, बेटे बंबई चलोगे? यानी कि उन्होंने सिर्फ पुछया सी ते अनिल दा ने बिना सोचे हाँ कर दिती। भावें वह नहीं जानते सी कि बंबई कित्थे है, की है, कौन मैनू लैके जा रहा है, उन्होंने बस जाना सी, एक सुपना देखिया सी तां हाँ कर दिती। जदों वह बंबई पहुँचे तो सागर मूवी टोन नामक एक कंपनी सी उत्थे उन्होंने उसके सामने उन्होंने ट्रायल होया। अनिल दा ने उत्थे एक भजन गाया जिसका नाम सी भजमन नारायण। तो जदों उन्होंने वह भजन गाया, गाँवे गाँवे खुद इन्ने ज़्यादा इमोशनल हो गए कि उन्होंने अखा के हंझू आ गए। उन्होंने उस जज्बे को देख के मालक ने तुरंत कह दिता, इस लड़के नू नौकरी ते रख लो। उन्होंने तनखा सीधा 250 रुपये महीने कर दी, जो उस जमाने की बहुत वड्डी रकम सी। उस दिन तो बाद अनिल दा ने कदे पिछे मुड़ के नहीं वेख्या। तो चलो जी सुनते हैं अगला गीत, मिलते हैं गीत दे उस पार, क्योंकि गल्लां बातां बहुत सारियां ने ते टाइम भी साढ़े कोल थोड़ा है, लेकिन गल्लां तां पूरियां करनियां ही ने ना।

ही पछाणी जावे। चौसा, मालदा, हर नाम दे नाल लोकां दियां यादां जुड़ियां होईयां ने। दक्षणी भारत जाओ तां बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल दा हिमसागर, उड़ीसा ते आंध्रा प्रदेश दा सुवर्ण रेखा, यानी बदलदा है अंब दा रंग रूप ते उसका स्वाद भी बदल जांदा है। साथियों, अंब दी यात्रा हुण पिंड तों ग्लोबल मार्केट तक भी पहुँच रही है। अज मन की बात दे माध्यम नाल मैं अंब दी पैदावार नाल जुड़े अपने किसान भैण भरावां दी शलाघा करांगा। तुसीं देश दी खेती अर्थव्यवस्था दे लई आम किसान नहीं, बहुत खास हो, इंज ही छाए रहो। साथियों, गर्मी दे दिनां विच वैसे तां स्कूलां दीआं छुट्टियां हुंदीआं ने, लेकिन मैं एक अजिही क्लास दी गल करांगा जिस विच तुहाडा दाखिल होण नूं मन कराएगा। साथियों, एक स्थिति दी कल्पना करो, एक अजिहा स्कूल जिथे बच्चे भी आउंदे होण, नौजवान भी ते बजुर्ग भी, जिथे कोई फीस ना होवे, कोई वड्डी बिल्डिंग ना होवे, कोई क्लासरूम भी ना होवे, ते सब तो रोचक गल उथे क्लास नदी विच लगदी होवे। साथियों, कोई कहानी नहीं, एक सच्चा यतन है। केरलम दे अलुवा विच साजी वला शेरिल जी अजिहा एक स्विमिंग क्लब चला रहे ने। हुण तक 15,000 तो ज़्यादा लोग उथे तैरना सीख चुके ने। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों भी स्विमिंग सिखाई है। इस यतन के पिछे एक पीड़ा भी लुकी है। कुछ साल पहला एक किश्ती हादसे विच कई विद्यार्थियों की मौत हो गई सी। उस घटना ने साजी जी नूं अंदर तक झंझोड़ दिता। उन्होंने सोचा जेकर बच्चों तैरना आउंदा हुंदा तां शायद कई जाना बच जांदियां। बस इत्थों शुरू हुई उन्हां दी ये मुहिम। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन सानू एक बहुत वड्डी सिख्या देंदा है। सेवा करन लई बहुत वड्डे साधन जरूरी नहीं हुंदे, जरूरी हुंदा है एक चंगा इरादा ते लगातार कीता गया यतन। इन्हां दे ही दम ते हजारां लोकां दे जीवन विच बदला लियांदा जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनी मैनू यूरोप दे नीदरलैंड जाण दा मौका मिलिया। उत्थे मैं कई मीटिंगां विच शामिल होया। इस दौरान एक अजिहा पल आया जिसने हर भारती नूं माण नाल भर दिता। नीदरलैंड विच आयोजित एक विशेष समारोह च चोला काल दीआं प्राचीन तांबे दीआं पट्टियां भारत नूं वापस सौंपियां गईआं। उस प्रोग्राम च नीदरलैंड दे प्रधानमंत्री भी मौजूद सन। तांबे दीआं इन्हां पट्टियां नूं लै के मैनूं देश विदेश तों लगातार सुनेहे मिल रहे ने। लोग खुशी जता रहे ने, माण प्रगट कर रहे ने। दुनिया भर के तमिल समुदाय विच भी इस नूं लैके विशेष उत्साह है। साथियों, तांबे दीआं इन्हां पट्टियां नूं लैके लोकां विच काफ़ी जिग्यासा भी है। इसलिए अज मैं इस नाल जुड़ियां कुछ गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करना चाहुंदा। इन्हां विच 21 वड्डियां ते 3 छोटियां तांबे दीआं पट्टियां ने। यह मुख रूप विच राजा राजेंद्र चोला प्रथम वल्लों अपने पिता राजा राजराजा चोला दे एक वचन नूं पूरा करन नाल जुड़ियां ने। इन्हां विच आनई मंगलम पिंड नूं, एक बौद्ध विहार नूं दान देण दा वर्णन है। इन्हां तांबे दीआं पट्टियां विच चोला वंश दीआं प्राप्तियां दा भी जिक्र मिलदा है। इन्हां तों पता लगदा है कि चोला साम्राज दी समुंदरी शक्ति किन्नी मजबूत सी। दक्षण पूरब एशिया दे देशां नाल उन्हां दे संबंधां दी जानकारी भी इस विच मिलदी है। चोला साम्राज दे समृद्ध इतिहास ते संस्कृति ते सानू सारिआं नूं बहुत माण है। साथियों, साडी भारत सरकार भी अजिहीआं वडमुल्लीआं धरोहरां दी संभाल लई लगातार यतन कर रही है। इसे क्रम विच ज्ञान भारतम अभियान दे तहत छत्तीसगढ़ दे मल्हार विच भी एक महत्वपूर्ण खोज होई है। उत्थे 3 दुर्लभ तांबे दीआं पट्टियां मिलीआं ने। इह पांडुवंशी राजवंश दे महारिशी बाला अर्जुन दे शासनकाल नाल जुड़ियां मनियां जा रहियां ने। माहिर मनदे ने कि यह शिलालेख 6वीं-7वीं सदी दे ने, यानी 1400-1500 साल पुरानियां तांबे दीआं इह पट्टियां प्राचीन ब्राह्मी लिपि ते पाली भाषा विच लिखियां गईआं ने। इन्हां नाल उस समें दी शासन व्यवस्था, धर्म संस्कृति दे बारे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, साडे भारतीयां विच खगोल

0: तो सामने आई है। बस्ती दे आकाश गुप्ता अपने पिंड दी मनोरमा नदी नूं वेख के बहुत दुखी हुंदे सन, क्योंकि जिस नदी नूं उन्होंने बचपन विच साफ ते जिवंत वेख्या सी, समय दे नाल उस नदी विच प्लास्टिक जमा होण लगा सी, गंदगी वधदी जा रही सी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि वह शिकायत नहीं करनगे, एक नवी शुरुआत करनगे। शिकायत नहीं शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों नाल लिया, सिर्फ जाल सी, बेलचा सी, टोकरी ते सब तो वड्डी ताकत सी कुछ बदलन का संकल्प। ये नौजवान नदी विच उतरदे सन, जल कुंभी कढ़दे सन, प्लास्टिक ते कूड़ा बाहर कढ़दे सन। कई बार एक दिन 50-60 किलो तक कूड़ा नदी चों कढ़िया गया। हौली हौली मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर तो साफ दिसन लगा। आले दुआले दे लोकां दा ध्यान भी इस काम वल गया, लोकां विच स्वच्छता नूं लैके जागरूकता वधी। साथियों, अजही ही एक प्रेरक कहानी गोवा तो भी सामने आई है। गोवा दे बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर टीचर ने, लेकिन समाज दे लई काम करन दा उन्हां दा उत्साह अज भी उंजी है। उन्हां नूं मड्डी तोलाप इलाके विच पानी दी समस्या बहुत परेशान करती सी। उन्होंने भी इस नूं हल करन दे लई काम करना शुरू किया। बाल कृष्ण जी ने पाइपलाइन विछाउण दे काम विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस नाल कई घरां तक पानी पहुंचया, जिन्हां परिवारां नूं पानी दे लई रोज़ संघर्ष करना पैंदा सी, उन्हां दे लई एक बहुत वड्डी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मैनूं एक बहुत चंगा तजर्बा होया, इसका संबंध मन की बात नाल भी जुड़िया, इसलिए अज मैं इसकी चर्चा तुहाडे नाल करना चाहांगा। तमिलनाडु दे नागरकोइल विच मेरी मुलाकात एक टीचर नाल हुई। लगभग 3 दहाके पहला भी मैं उन्होंने मिलिया सी। मैं गल कर रहा गिरिजा अम्मा जी दी। इस मुलाकात दे दौरान कुछ नौजवान स्टूडेंट्स भी उन्होंने नाल सन। साथियों, गिरिजा अम्मा जी लगभग 15 स्कूल चलाउंदे ने। इन्हां विचों चेन्नई दा जयगोपाल गरोडिया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उन्हां दी देशभगती दी भावना हर भारतवासी नूं प्रेरित करन वाली है। उन्होंने मन की बात तो प्रेरणा लेके देश दे अनेकां सैनिकां लई योगदान दा संकल्प लिया, इसलिए उन्होंने अपने सारे स्कूलां दे विद्यार्थियों नूं प्रेरित किया। उन्होंने बच्चियां नूं कहा कि वह वीर जवानां दे लई हर दिन 1 रुपया योगदान देन, यानी हर साल विच हर विद्यार्थी वल्लों 365 रुपये जमा होए। इस छोटे छोटे योगदान नाल लगभग 40 लाख रुपये इकट्ठे होए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी रकम का चैक मैनू सौंपया। उन्हां नाल गलबात दे दौरान मैं महसूस किया कि मां भारती दे प्रति उन्हां दा समर्पण किन्ना डूंघा है। पिछले साल ही चेन्नई दे पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 साल पूरे किते ने। देश की सिक्ख्या ते संस्कृतिक माण नूं अगे वधाउण विच इस स्कूल नैटवर्क की भूमिका बहुत शलाघायोग है। मैं इस नाल जुड़े सारे लोगों नूं बहुत बहुत वधाई देना ते उन्हां विद्यार्थियों की भी विशेष शलाघा करदा जिन्होंने अपने वीर सैनिकां दे लई योगदान दिता। साथियों, भारत के हर पिंड विच हर शहर विच कुछ अजिहा हो रहा है जो सानू प्रेरणा दिंदा है। कई बार इन्हां यतनां की ज़्यादा चर्चा नहीं हुंदी, लेकिन जदों असीं इन्हां नूं जाणदे हां तां इह विश्वास होर मजबूत हुंदा है कि देश अपने लोगों की शक्ति नाल अगे वध रहा है। मेरी तुहानूं बेनती है अपने आले दुआले अजिहे यतनां नूं जरूर वेखो। जो लोग समाज के लिए चंगा काम कर रहे ने उन्हां पछाणो, उन्हां दी शलाघा करो, उन्हां तों सिखो ते हो सके तां खुद भी किसी चंगे काम नाल जुड़ो। अगले महीने मन की बात विच कुछ होर प्रेरक गाथावां दे नाल मैं फिर तुहाडे नाल जुड़ांगा। बहुत बहुत धन्नवाद, नमस्कार।
1: हुणे तुसी मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे देशवासियां लई प्रसारण मन की बात दा पंजाबी रूपांतर सुन रहे सी। आकाशवाणी दे बठिंडा, चंडीगढ़, लुधियाणा ते पटियाला केंद्रां तों वी इह प्रसारण नालों नाल कीता गया। आओ हुण सुणदे हां देश प्यार दा गीत।

0: गुरविंदर सिंह दी। गुरविंदर सिंह ने सिर्फ 10.09 सेकंड दे विच 100 मीटर दी रेस पूरी करके नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिता। ते जदों सानू पता हुंदा है ना कि हाँ यार मैं कर सकदा हां, मैनू पता है कि हुण मेरा रिकॉर्ड ना बनन वाला है। ते यही गल हुई गुरविंदर सिंह नाल। रेस तो पहला ही गुरविंदर ने अपने चेस्ट नंबर ते पिछे ना एक टारगेट लिख लिया सी 10.10 सेकंड का। ते जदों रेस खत्म हुई तो स्टॉप वॉच ने दिखाया 10.09 सेकंड। ते रांची विच होए 29th नैशनल सीनियर फेडरेशन कप के फाइनल्स विच जिवें ही गुरिंदर फिनिश लाइन पार करदे ने पूरा स्टेडियम तालियां नाल गूंज उठदा है। यानी कि जिहड़ा सुपना उन्हें वेख्या सी ना वह पूरा भी करके दिखाया। ये सी एक रेस जिसने सारियां दा दिल जित लिया। यह 12 साल की मेहनत स्ट्रगल डिसिपलिन ते भरोसे की कहानी। अज बन चुके है जी इंडिया का फास्टेस्ट मैन। सारे हुण यही गल कह रहे हैं शाबाश मुंडिया तू तो कमाल कर दिता। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਮਹਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਪੋਟੀ ਸੰਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਸੌਂਗ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸੌਂਗ ਦੇ ਬਾਅਦ।
1: ਸਰਕਾਰ
2: ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ,

FM बैन 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा FM रेनबो चैनल है। इस वेले साडी स्टूडियो दी कड़ी मुताबक 9 बज गए ने ते वेला हो गया है FM न्यूज़ हेडलाइंस दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश दी अनमोल विरासत नूं सुरक्षित रखण लई काम कर रही है। आकाशवाणी ते अपने मन की बात प्रोग्राम विच राष्ट्र नूं संबोधन करदिया प्रधानमंत्री ने देशवासियां नूं भयानक गर्मी ते मौसम दौरान बेहद सावधानी वरतन अते सरकारी दिशा निर्देशां दी पालना करन दी अपील कीती है।

बी गरिमा जी ने भी मैसेज भेजे है, ते लिखे फिल्म जवार भाटा गीत रूठा है तो मना लेंगे। ओके जी, किन्नू मनाना है कोई गल नहीं, मन जाएगा, तुसी चिंता ना करो। फिलहाल असी गाना पेश कर रहे हैं जी, साढ़े एक दोस्त ने फरमाइश सानू भेजी सी जिदे विच दामनी मूवी दी दी गल कीती हुई सी, ते गीत सी गाँव है चांद तारे। तो चलो जी, गवाए हैं चांद तारे, ये गीत भी असी सुन लेंदे हैं, मिलते हैं गीत दे उस पार।

जी हाँ दोस्तों, तुसी ट्यून कीता 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते मैं तुहाडी अपनी दोस्त महक प्रोग्राम चल रहा दिल चाहता है। ते हुण वेखदे आ साडे दोस्तां दा दिल की चाहुंदा है। दिल चाहता है गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार प्रमोद कुमार। ओके जी, इन्होंने भी लिखा है कोई भी गीत सुना दो। कोई भी गीत तो नहीं होंदा जी, किन्नी वारी दसीए तुहानू। अगला असी गीत देखते हैं, फरमाइश केड़ी है। दिल चाहता है पिंड मुलिया वाली जिला फाजिल का। प्यार भरी नमस्कार। नमस्कार जी, विनोद काठपाल, प्रवीण काठपाल, काठपाल परिवार ने सानू फरमाइश भेजी है। फिल्म मामला गड़बड़ है दा कोई भी गीत चला दो। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुसी प्रोग्राम दे विच शिरकत कीती। ते अगला है करणवीर सिंह पॉल ते पूरा पॉल परिवार सराबा नगर जलंधर। फिल्म आन मिलो सजना दा गीत, रंग रंग फूल खिले हैं अब आन मिलो सजना, ये गीत असी लगा रहे हैं जी। बाकी जड़े फरमाइश जिन्हां दी पूरी नहीं हुई उन्होंने नाराज़ नहीं होना, क्योंकि हले टाइम साढ़े कोल अद्धा घंटा पिया है ते हौली हौली तुहाड़ियां फरमाइशां पूरी कीती जाएगी। तो फिलहाल ये गीत इंजॉय करो, मिलते हैं गीत दे उस पार।

जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम एंजॉय करो दिल चाहता है। ते मैसेजेस दी बौछार आ गई है साडे कोल। अगला मैसेज है जी गोविंद पूरा सीकर राजस्थान तो, सीकर राजस्थान तो मैसेज आया है। दातार सिंह शेखावत ते संगीता कंवर जी ने मैसेज भेजा है, लिखा है फिल्म रोटी का कोई भी गीत सुना दीजिए। जी बिल्कुल, तुहाडी फरमाइश असीं पूरी करदे हां। ते नाल ही सुप्रेम नमस्कार जी, नमस्कार जी, किसी भी गीत में शामिल करिए।

0: जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम एंजॉय करो दिल चाहता है ते मैसेजेस दी बौछार आ गई है साडे कोल। अगला मैसेज है जी गोविंद पूरा सीकर राजस्थान तो, सीकर राजस्थान तो मैसेज आया है। दातार सिंह शेखावत ते संगीता कंवर जी ने मैसेज भेजा है, लिखा है फिल्म रोटी का कोई भी गीत सुना दीजिए। जी बिल्कुल, तुहाड़ी फरमाइश असी पूरी करते हैं। ते नाल ही सुप्रेम नमस्कार जी, नमस्कार जी, किसी भी गीत में शामिल करिए। ओके जी, किसी भी गीत दे विच असी तुहानू शामिल करते हैं। ये मैसेज सानू भेजा है विनोद बरासा ते विशाल बरासा जी ने, आपका हर पल खुशियों से भरा रही। अगला मैसेज आया जी कृष्णा पार्क दिल्ली तो, सुखविंदर सिंह जौड़ा ते सिटी दीवाना ते इन्होंने मैसेज सानू भेजा है जी फिल्म ये रात फिर ना आएगी मूवी का गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ दे विच मेरा प्यार वो है कि। चलो जी, हाले तक इन्नी फरमाइश असीं पूरी करते हैं, उस तो बाद फरमाइश देखते हैं साडे दोस्तां दी केड़ी केड़ी आई है। तुसीं जाना किते भी नहीं है, प्रोग्राम चल रहा है दिल, प्रोग्राम चल रहा है।
1: मर कर भी तुमको जुदा
0: सही किया, मर के भी तुमको जुदा नहीं करेंगे क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है दिल चाहता है।

लगदे पहचानी पहचानी आवाज़ है। जी हाँ, ये है मैसेज किरण नरोला ग्रीन पार्क तो कपूरथला तो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने सानू गीत लिखिया है अमर प्रेम मूवी का गीत रहना बीती जाए। ओके जी, तुहाड़ी फरमाइश असी प्ले करते हैं, अगला मैसेज भी नाल ही पढ़ लेंदे हैं। दिल चाहता है दे विच सप्रेम नमस्कार जी, नमस्कार जी, आप कैसे हैं? बहुत वधिया, तुसी दसो मूवी धन्यवाद सोंग एक ही घोंसला दो दिलों का अगर हो जाए, ये गीत इन्होंने प्ले करन ले किया है जी। बिल्कुल तुहाड़ी फरमाइश पूरी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगला मैसेज भी देख लेंगे, आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार, नमस्कार जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया जी, ताड़ा भी ते नाल ही आदरणीय प्रसारक जी, आप हमारी फरमाइश किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। ठीक है जी, फिर थानू असी शामिल कर लेंगे हाँ किरण नरोला जी की फरमाइश दे विच जिहड़ी उन्होंने की है अमर प्रेम मूवी दी। तो चलो जी सुनते हैं ये गीत, मिलते हैं गीत दे उस पार, प्रोग्राम सुन रहे हो दिल चाहता है।

कोई हालात को नहीं समझता, कोई जज्बात को नहीं समझता, ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है, कोई पूरी किताब को नहीं समझता। गल तो सही है, लेकिन असी सब कुछ समझ लेंदे हाँ साढ़े दोस्तों के दिल की गल, जिहड़ी वह इंतजार कर रहे हैं कि साड़ी फरमाइश कदों प्ले की जाएगी। बिल्कुल तुहाड़ी बारी आ गई है जी। अगली फरमाइश साडे कोल आई है, दिल चाहता है, आरशी महक मैडम जी, प्यार भरी नमस्कार। नमस्कार जी।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू। आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आ गया। कोई गल नहीं जी, शाम आती है फिर रात आ जाती है फिर सवेर हो जाती है, लेकिन शाम दे दौरान जिहड़ियां गल्लां तुहाडे दिमाग दे विच आंदियां ना, मैं समझ सकती हाँ। लेकिन उसे लई तां प्रोग्राम शाम वेले हैगा है, साडा दिल चाहता है जिहदे विच तुसीं सानू अपने दिल दियां जिहड़ियां फरमाइशां ने वह भेज सकते हो। तो चलो जी देखते हैं अगली फरमाइश साडे कोल कीड़ी आई है।

हिस्टोरिकल फरमाइश है ये, आपको हार्दिक नमस्कार। एक नगमा सुना दीजिए जी। ओके जी, आप वर्ड बड़ा सुना है, नगमा सुना दीजिए। फिल्म चोरी चोरी पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में, ये जड़ी फरमाइश सानू भेजी है भोपाल गढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा जी ने। ते कपिल जी ने सानू मैसेज जरूर शामिल करे, बहुत बहुत धन्यवाद जी, इन्होंने सानू फरमाइश भेजी है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ते अगली फरमाइश असी देखते हैं, सुप्रेम नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। गीत मैं निकला ओ गड्डी लैके, गदर टू मूवी का जिहड़ा गीत है ये चलाना है। ओके जी, ये फरमाइश सानू भेजी है वेद मिड्डा ते अलका मिड्डा जी ने। ओके जी, फिलहाल असं गीत प्ले कर रहे हैं चोरी चोरी मूवी का, वह गीत पंछी बनो उड़ती फिरो। ये गीत इंजॉय करो ते तुसी भी पंछी दे वांगू अपने दिल दियां गल्लां नू उड़ा दो, यानी ओवर थिंकिंग नू गायब कर दो ते इस गीत नू इंजॉय करो।

क्यों आज फिर मैंने नींद का सौदा किया, क्यों आज फिर मैंने उस जिंदगी का सौदा किया। अनींद का सौदा करे ना तू कभी याद आए, ना कभी याद हम करें। ना तू कभी मिलने आए, ना कभी मिलने हम आए। जिंदगी तेरी भी ऐसी गुजर जाए, जिंदगी मेरी भी ऐसी गुजर जाए। ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਸ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਮਹਿਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਮ।

जिंदगी का हर दिन खास है, बस नजरिए की ही तो बात है। जिंदगी का हर दिन खास है, बस नजरिए की ही तो बात है। जो मुस्कुरा के जी ले आज को, उसका कल भी उसके साथ है। क्योंकि यही जिंदगी है। सुन दे यहाँ जगजीत सिंह दी एक और गजल, ये जिंदगी।

अजब मुकाम पे ठहरा हुआ है काफिला जिंदगी का, कि अजब मुकाम पे ठहरा हुआ है जिंदगी का काफिला, सुकून ढूंढने चले थे नींद ही गवा बैठे। रात का टाइम हो रहा है तो हाड़े दिमाग विच चीजा चल रही ने जिंदगी बारे, की होया आज पूरा दिन, की करना है आज सारा दिन, ते जिंदगी जिंदगी जिंदगी यही तो है जिंदगी जिहड़ी सानू सोचन ते मजबूर कर दिंदी है, जिहड़ी हर गल ते सानू यही कहती है रुकना चलदा रहे। एक होर गज़ल सुनते हैं चंदन दास जी की आवाज़ के, आ भी जाओ जिंदगी काम है।

पुराने नगमों की खुशबू में दिल फिर से महक उठता है, हर धड़कन जैसे किसी मीठी आवाज़ से बहक उठता है। ये गीत नहीं लम्हों का जादू है, दिल से हर दिल तक चहक उठता है।

एक रात एक बात लिखूंगा, खुद को दाग तुझे साफ लिखूंगा। हकीकत में तू कभी मिलेगा नहीं, हकीकत में तू कभी मिलेगा नहीं, एक किताब में अपनी मुलाकात लिखूंगा।

कुछ इस कदर इश्क की आंधी आई हमें बेनाम कर गई, कुछ इस कदर इश्क की आंधी आई हमें बेनाम कर गई, नींद छीन ली चैन उड़ा दिया। ठीक था, नींद छीन ली चैन उड़ा लिया, ठीक था हमें भी तेरे नाम कर गई। हमें भी तेरे नाम कर गई।

0: रहना। सोना ना सितारों का है कहना, ख्वाबों के अंधेरे में न रहना।
1: गम ने हंसने ना दिया, जमाने ने रोने ना दिया। गम ने हंसने ना दिया, जमाने ने रोने ना दिया, इस उलझन ने चैन से जीने ना दिया। थक के जब सितारों से पना ली, नींद आई तो तेरी यादों ने सोने ना दिया।

हम ऐसी कुल किताबें काबिले गौर समझते हैं, हम ऐसी कुल काबितें, हम ऐसी कुल किताबें काबिले गौर समझते हैं कि जिनको पढ़ के दिल इंसान कुछ और समझते हैं। ज़माना इल्म से आगे, बड़े या हालात से आगे, अकबर तो खुद को बस खुशबुए दौर समझते हैं।